दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन है विश्वास को बनाए रखना। विश्वास बनाना और बनाए रखना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण काम है। जब हम किसी के साथ विश्वास बनाते हैं तो इसमें समय, मेहनत और ईमानदारी लगती है। विश्वास खोना बहुत आसान है, लेकिन इसे वापस पाना और बनाए रखना बहुत कठिन। विश्वास खोने के लिए अक्सर एक छोटी सी गलती या अनदेखी काफी हो सकती है। जब विश्वास टूट जाता है तो रिश्तों में दरार आ सकती है और इसे सुधारने में समय लगता है।

श्रोताओं, ये था आज का नीति वचन और इस सुविचार के साथ ही आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुण एफएम जहां होती है दिल से दिल की बात। हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं और आज साल 2026 के मई महीने की 17 तारीख है और दिन है रविवार। और श्रोताओं, हर रोज की तरह ही आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेरों ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रमों को। और हमारे इस पहले प्रसारण सभा के सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक एल ताली और तकनीकी अभियंता बी बोरा। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो साथी बामिन सुमती। तो आइए श्रोताओं, हमारे इस पहले प्रसारण में सबसे पहले आपको हम अब से लेकर सुबह के 11 बजे तक होने वाले सभी कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं।

सुबह 6 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत और 6:40 पर आप सुन पाएंगे गालो श्रोताओं का कार्यक्रम।

सुबह 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे और 7:10 पर आप सुन पाएंगे आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम। 7:15 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इंफरटेनमेंट और तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 7:35 पर।

कार्यक्रम सदाबहार आप सुनेंगे सुबह 7:40 पर और 8 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात तथा मॉर्निंग न्यूज और शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज।

सुबह 8:35 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर और 9 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 9:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप।

सुबह 10 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। तो श्रोताओं, ये तो थे अब से लेकर सुबह के 11 बजे तक होने वाले सभी कार्यक्रमों की जानकारी। और श्रोताओं, अब से थोड़ी देर में ठीक 6 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की ये पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारत समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade as well as collaboration in green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. The two prime ministers will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with President of the European Commission, Ursula von der Leyen. This engagement represents the third leg of the prime minister's broader European tour. Earlier, Prime Minister Modi undertook a series of engagements on his visit to the Netherlands yesterday, ranging from community interactions to a meeting with the Dutch royal family. Addressing a community program in The Hague, the Prime Minister said the world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis. He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as a land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
3: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhumi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा
4: The Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election Bill held extensive consultations in Bengaluru with political parties, legal fraternity and civil society yesterday. Briefing media persons, the chairman of the committee, P.P. Chaudhary, informed that the objections and recommendations are being collected by the JPC during their visits to different states. On challenges posed by the proposal, he said that synchronizing elections will need to prematurely dissolve a few state assemblies and resolve issues arising out of anti-defection laws, no confidence motion and president rule. The Archaeological Survey of India, ASI, has granted the Hindus an unrestricted access to the monument at Bhojshala complex in Dhar district of Madhya Pradesh for worship and other purposes. The ASI's decision came a day after the Madhya Pradesh High Court ruled that Bhojshala in Dhar was a temple of goddess Saraswati. Within days of levying high custom duties on precious metals, government has imposed import curbs on silver. The Directorate General of Foreign Trade in a notification said the import policy for silver, including silver plated with gold and platinum, are revised from free to restricted with immediate effect. Delhi government has taken a significant decision to reduce the value-added tax on aviation turbine fuel in the national capital from 25% to 7%. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that the decision has been taken in line with the Prime Minister Narendra Modi's emphasis on strengthening connectivity and economic activity with the objective of providing relief to the aviation sector, promoting tourism and logistics activities. In badminton, Indian duo Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will face the Indonesian pair of Leo Roli Carnando and Daniel Martin in the men's doubles final of the Thailand Open in Bangkok today. And that is the end of this news bulletin.

श्रोताओं, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर।

श्रोताओं, हम अपने जीवन का हर काम अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही शुरू करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारे लिए उनसे ज्यादा सही, अच्छी और सच्ची नीयत और किसी की नहीं हो सकती। लेकिन श्रोताओं, अगर उनसे भी ज्यादा हमें बढ़कर अगर कोई प्यार कर सकता है, कोई आशीर्वाद दे सकता है, तो वो है हमारे परमेश्वर, हमारे भगवान, हमारे परमात्मा। और श्रोताओं, परमात्मा का नाम मानो एक रत्न है, एक ऐसा हीरा है जिसका मूल्य पाया ही नहीं जा सकता। तो श्रोताओ, आइए हम भी अपने दिन की शुरुआत करते हैं अपने भगवान, अपने परमेश्वर को याद करते हुए, उनका नाम लेते हुए हमारे कार्यक्रम भक्ति गीत में। और इस कार्यक्रम में आज आप सुन पाएंगे क्रिस्तिया भक्ति गीत।

हम अपनी जिंदगी में चाहे जितनी भी कामयाबी हासिल कर ले, पर एक अच्छे और सच्चे इंसान की पहचान उसका व्यक्तित्व ही होता है। और हमें अपने भगवान से बाकी सारी चीजों से ज्यादा हमें अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने की आशीर्वाद प्रार्थना करनी चाहिए। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति गीत, और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे गालो श्रोताओं का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का कार्यक्रम। अगर आप इनके आगे के कार्यक्रमों को भी सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन करिए आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। और श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

श्रोताओ, हाल ही में आलिया भट्ट ने कांस फिल्म फेस्टिवल के एक इंटरव्यू में अपने ग्लोइंग स्किन का राज शेयर किया है, और वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है बल्कि उनकी एक फेवरेट स्नैक है, एक सिंपल सा स्नैक रेसिपी जो अभी काफी वायरल हो रहा है। तो आइए आज हम डीकोड करते हैं उनकी अमेजिंग स्किन के राज को, और आपको बताते हैं उनके स्नैक में क्या क्या जाता है और उनके फायदों के बारे में।

दोस्तों, आलिया भट्ट बताती हैं कि जब भी उनका स्नैक करने का मन करता है तो वो कुछ चम्मच घी लेती है, उसमें थोड़ी सी गुड़ डालते हैं, थोड़े पिसे हुए पीनट्स और थोड़ी सी ग्रेटेड कोकोनट मिलाकर एक स्नैक बनाते हैं और वो अक्सर इस स्नैक को अपने डाइट में इंजॉय करते रहते हैं। और श्रोताओं, यह स्नैक ना सिर्फ बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, इसमें कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। तो आइए हम जानते हैं इसके हर एक इंग्रेडिएंट्स को विस्तार से।

सबसे पहले हम बात करते हैं देसी घी के बारे में। देसी घी पोषक तत्व का खजाना है जो आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करता है। जो है दोस्तों, इसमें ब्यूट्रिक एसिड, घी में मौजूद ये फैटी एसिड आपके गट की कोशिकाओं को

भी आपकी प्रतिरोधक क्षमता यानी आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में काफी मददगार साबित होती है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, डी, ई और के भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर आपको मौसमी बीमारियों से बचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हड्डियों और जोड़ों के लिए भी ये वरदान साबित हुआ है। दोस्तों इसमें विटामिन के टू पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और कैल्शियम को सोखने में मदद करता है। ये जोड़ों में चिकनाई बनाए रखता है, जिससे जोड़ों के दर्द में आपको आराम मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको देसी घी से त्वचा और बालों में भी कई सारे फायदे दिखेंगे। घी एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है, इसका सेवन करने से या आप चेहरे पर लगाने से त्वचा में कसाव आता है और झुर्रियां कम होती है और आपकी चमक बढ़ती है। और तो और श्रोताओं, ये आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी बेहद मददगार साबित होती है, क्योंकि इसमें विटामिन ए है, जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है। यह आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाता है और सूखापन दूर करता है।

और घी में आपको लैक्टोस और कैसीन जैसे तत्व आपको नहीं मिलेंगे जो दूध या अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको मिलते हैं, जिससे कई लोगों को कई सारे परेशानियां होती है। तो आपको घी में वो सारे तत्व नहीं मिलेंगे, इसलिए जिन लोगों को दूध पीने से एलर्जी होती है वो इसका सेवन आसानी से कर सकते हैं।

श्रोताओ, अब बढ़ते हैं हमारे अगले इंग्रेडिएंट की ओर, जो है जैगरी पाउडर यानी कि गुड़। इसके भी कई सारे फायदे हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। प्राकृतिक और पौष्टिक स्वीटनर है ये गुड़, जो आपको पाचन में सुधार करती है, खून साफ करने में मदद करती है और आयरन की कमी को दूर करने में बहुत ही फायदेमंद होती है। जी हाँ दोस्तों, आप भोजन के बाद गुड़ का सेवन करने से आपका पाचन एंजाइम जो है उत्तेजित होते हैं, जिससे गैस, अपच और कब्ज में राहत मिलती है। यदि किसी को अनीमिया की प्रॉब्लम है तो गुड़ लेने से आपकी अनीमिया की परेशानी में भी आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि गुड़ जो है आयरन का बेहतरीन स्रोत है, जो आपके हेमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाकर शरीर में खून की कमी को दूर करता है और कमजोरी कम करता है। यह आपके खून को साफ भी रखता है और डिटॉक्स भी करता है। जी हाँ दोस्तों, ये गुड़ का सेवन करने से आपका लीवर जो है साफ रहता है और शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है। यह आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, हड्डियों और जोड़ों के लिए भी फायदेमंद है, और तो और ये ऊर्जा का प्रतीक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों। ये गुड़ लेने से आपको अपने शरीर में तुरंत ही ऊर्जा प्रदान होती है, इसीलिए थकान होने पर गुड़ का एक टुकड़ा खाना बहुत ही फायदेमंद होता है।

श्रोताओ, बाकी के इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप फिलहाल लीजिए एक म्यूजिकल ब्रेक और इसमें हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम बात कर रहे हैं आलिया भट्ट के वायरल हुई स्नैक के बारे में और उसकी उसके कई सारे इंग्रेडिएंट्स और उनके फायदों के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसमें से दो इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले इंग्रेडिएंट की ओर।

जो है पीनट्स यानी कि मूंगफली। श्रोता, मूंगफली के भी काफी सारे फायदे होते हैं, इसे भी पोषक तत्व का खजाना माना जाता है। यह दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, गुड फैट, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। ये आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है, वजन नियंत्रित करने में और शुगर लेवल को स्थिर रखता है, और तो और त्वचा को पोषण देने में भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। जो दोस्तों, मूंगफली में मौजूद गुड फैट्स जो है आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। ये धमनियों को स्वस्थ रखता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन जो है बेहतर रहता है और आपके और आपको हार्ट अटैक का जोखिम कम करता है। मूंगफली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, यानी कि इसे खाने से ब्लड शुगर का स्तर जो है अचानक नहीं बढ़ता, और ये डायबिटीज के मरीजों के लिए एक बेहतरीन और सुरक्षित स्नैक है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने आपको बताया था कि गुड़ जो है डायबिटीज पेशेंट के लिए जरा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, पर आप उसे छोड़ कर उसके अलावा पीनट्स का भरपूर सेवन कर सकते हैं। श्रोता, ये आपको वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, आपके स्किन और हेयर में जो ग्लो है वो लाने में आपकी मदद करता है, और तो और ये आपके ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन B1 होता है और नियासिन का ये अच्छा स्रोत है, जो आपके याददाश्त को तेज करती है और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये आपके बोन हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद है और आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ाने में यानी कि आपके एनर्जी बूस्ट के लिए काफी फायदेमंद रहता है, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, या ये थकान को दूर करता है और आपकी मांसपेशियों की मरम्मत करता है, यानी कि मसल रिपेयरिंग में बहुत ही मदद करता है ये।

आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले और आखिरी इंग्रेडिएंट की ओर, जो है कोकोनट, यानी कि नारियल। और नारियल के फायदे भी आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता है। कच्चा नारियल फाइबर का अच्छा स्रोत होता है, जो आपके पेट से जुड़ी समस्या को दूर करता है और कब्ज में आराम दिलाता है। तो आप कच्चे नारियल का सेवन कर सकते हैं। यह आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, कमजोरी को दूर करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और एंटीबैक्टीरियल गुण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ये आपकी कमजोरी को दूर करने में फायदेमंद होता है। नारियल में मौजूद मध्यम श्रृंखला शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं और भूख को नियंत्रित कर आपकी वेट मैनेजमेंट में आपकी मदद करता है। ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। जी हाँ दोस्तों, कच्चा नारियल कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। और श्रोताओ, नारियल तेल के फायदों के बारे में तो आप सभी को पता है। त्वचा और बालों के लिए ये काफी फायदेमंद साबित होता है। आपके हाइड्रेशन प्रदान करता है आपके बालों को और आपके स्किन को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखता है। और साथ ही आपके हृदय और हृदय में भी दिल के हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद है और शुगर को भी कंट्रोल में रखता है। अच्छा दोस्तों, और नारियल पानी पीने के फायदे भी आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। ये शरीर को हाइड्रेट रखता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करता है और गुर्दे की पथरी को बाहर निकालने में भी मदद करती है।

और श्रोताओ, सूखा नारियल खाने के लाभ आपको बताते हैं, ये आपके जोड़ों के दर्द को यानी अर्थराइटिस को कम करने में बहुत ही मददगार साबित होता है, और तो और आपकी ब्रेन हेल्थ यानी आपकी याददाश्त को बढ़ाने में भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो श्रोताओ, ये थे इंग्रेडिएंट्स आलिया भट्ट के वायरल स्नैक के। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये स्नैक इतना वायरल क्यों हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ ना ही स्वादिष्ट है बल्कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है आपके शरीर के लिए, आपके त्वचा के लिए। तो आप भी इस स्नैक को आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा।

तो श्रोताओं, हमें उम्मीद है आज के कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने जो भी आपसे आपके साथ बातें साझा की है वो आपको जरूर पसंद आएंगे और आप जरूर ट्राई करेंगे इन रेसिपी को। तो चलिए श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं कुछ हिंदी फिल्मी गीतों को।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। आपसे थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: श्रोताओं का कार्यक्रम ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: Siakaswani Itanagar Zero Hokala Srokatana program me mulim biyi. Suno no kapija patana pui me tapatodo. Suro pui me ka loko inisi hagyangha. School Education La Literacy Secretary Sanjay Kumar Buyo, Sinya Suloka School Hokaga, Abuloda, Himiatanka School Opala Manapugomi, Tailu Mosala, Honatamo Dokodana, Himiatan School Inyakendona, Hekapugomi, Tailu Mosala, High Level Meeting Ako, Dukungalamate. Upper Subansri, Siang, Upper Siang, Gurungkume, Karadadila, Shiyomichika, District Sosipun, Uruloda, Mutohula, Doya Biola Makindo, Hela Itanagar Hoka, Meteorological Center Atanha, Lukolaludo. 2027 Anyapaka, Agnivir Recruitment Musaneka, Entrance Examination Me, Aine Jun Puloka, 1 Hokela, 12 Ye, Mugla Makindo. Candidate Satan Huna Saka entrance exam me Bibola Munyakendona Heka candidate Satan Hu Atato admit card me www.joinindianarmy.nic.in website hoke download Malakendo Pasiga Thoka Tulang Halaka Niti Oil Factory Puchala Munemi Buyo Saturday Aloho Commerce and Industries Minister Nyato Dukam Momokobila Mutu Heka program ho 38 Pasigat East ka MLA Tapi Darang 37 Pasigat West ka MLA Ninong Eringla 39 Muboka MLA Okintaing Mula Alamate Entrepreneur Mohonto Panginmi Heka Niti Oil Factory Mi Mukola Mukohopa Asandalala Ongun State Hoka Sancha Himyata Natampana Government Daikontu Ho Kamela Damapa Business Mitare Mukanya Kindona Heka Pugomi Heka Aloho Minister Nyato Dukamla Hoka MLS Akwampanatanga Lupalalune Rubber Producer Society Office Gum Training Hall Udemi Buyo State Health and Family Welfare Minister Vyuram Wage Mopake Kesang Hoka Sijusa Lemba Ho Mukobila Mutu Heka Training Udeho Rubber Sanamika Dujudumyomi Ho Rubber Sanamika Sandopaka Kalenka Jumi Loko Benkola Training Bilina Makindo Halalukodo Heka aloho, sijusa hoka kapija paka, rubber sanami, digilaka, rubber aji, yapyo, mugbo farmer, late nisam nabamka, murtimulami, minister, viuram wage, momukobila matu. 9th Hangpan Dada Memorial Trophy Urahoka State Level Under 16 Football Ho Volleyball Tournament Hengasalamu Sanami Buyo Saturday Aloho Vesianka Alo Lembaho Hiribudoku Halalukodo Seka Tournament Semi Anyankamya Asok Chakra Hangpan Dada Ka Memory Ho Hengalamudu Sinyangka tournament hoka kapioja match me West Siang la Shiyomika team hu hengka salamatu. Longding la Dibang Valley team ka match hengka salamuko ho Longding team hu Dibang Valley team me 3-0 pa tumilamatu. Hira nyim team ho Longding ka team la Karadadi ka team hu 1-1 pa draw la itu Honansai team hu Siang team me 2-1 pa tumilamatu. Seka tournament me seka puloka 27 aloye hengkasala makindo halalukodo. Social activist Dr. Bengya Tolumka funeral meka yajali hoka mugla munho Chief Minister Pema Khandu momla alamata. डॉक्टर बेंग्या तोलुम का सोसाइटी पाका इनबिम बिनमी लुपाला होमो में आसानला चीफ मिनिस्टर पेमा खांडु बुयो सोशल मीडिया हो पोस्ट अकोटले गेला मत सुरोकतन पुलुको सन हम कने सिसिबसरातु प्रोग्राम में मिलिम बई सुरोनोनो कपे जापा तागे तयुका बसने में तपतो दो
0: श्रोताओं आप सुन रहे थे आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम। आप इनके कार्यक्रम को आगे भी सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर। आप इस चैनल पर ट्यून करिए और इनके बाकी के प्रोग्राम को वहां पर आप सुन पाएंगे। और श्रोताओं आप हमें सुन पा रहे हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

श्रोताओ, हर दिन की अपनी एक अलग ही पहचान, अलग महत्व होता है। तो आइए झांकते हैं इतिहास के पन्नों में और जानते हैं क्यों खास है आज का दिन, यानी क्यों खास है 17 मई।

ईयर 1540 में आज ही के दिन यानी 17 मई को शेर शाह सिंह को हिंदुस्तान का शासक घोषित किया गया था। उन्होंने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जिसका उपयोग हम आज भी करते हैं। ये काबुल से शुरू होकर भारत से होते हुए बांग्लादेश तक पहुंची थी। इसकी कुल लंबाई 3655 किलोमीटर है। इसके अलावा शेर शाह ने भारत में मुद्रा प्रणाली को मानकीकृत भी किया था। ईयर 1620 में आज ही के दिन पहली बार मेरी गो राउंड का इस्तेमाल टर्की के फिलिपोपोलिस में एक मेले में किया गया था।

ईयर 1769 में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने बांग्ला के बुनकारों पर कई प्रतिबंध लगाए थे, जिसका उद्देश्य बंगाल के फलते फूलते कपड़ा उद्योग को बर्बाद करना और इंग्लैंड में निर्मित वस्त्रों की बिक्री को बढ़ावा देना था। और आज ही के दिन पहली रंगीन तस्वीर स्कॉटिश वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने ईयर 1861 में लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूशन में दिखाई थी।

ईयर 1897 में आज ही के दिन पहली सफल पनडुब्बी यानी कि सबमरीन जो काफी दूर तक पानी के नीचे चलने में सक्षम थी और जिसमें इलेक्ट्रिक और गैसोलीन इंजन का संयोजन था, इस सबमरीन को डिजाइनर जॉन फिलिप हॉलैंड द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में आज ही के दिन लॉन्च किया गया था। और ईयर 1877 में 17 मई को यानी आज ही के दिन एडविन टी होम्स ने पहला टेलीफोन स्विच बोर्ड चोर अलार्म स्थापित किया था।

ईयर 2009 में आज ही के दिन यानी कि 17 मई को वीडियो गेम माइनक्राफ्ट को पहली बार जनता के लिए जारी किया गया था, जबकि ये अभी भी विकास के चरण में था। और 2023 में आज ही के दिन नेपाल की शेरपा कामी रीटा ने रिकॉर्ड 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी।

यह 1865 में आज ही के दिन विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। ये दिन वैश्विक स्तर पर डिजिटल क्रांति और इंटरनेट के उपयोग के महत्व को रेखांकित करता है। यह 1975 में आज ही के दिन जापान की जुनको तबई माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। दरअसल उन्होंने 16 मई को चढ़ाई चढ़ी और 17 मई यानी आज के दिन एवरेस्ट से वो वापस नीचे लौटी थी। पर्वत पर चढ़ने से पहले 4 मई को उनका कैंप एवलांच की चपेट में आ गया था। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और 12 दिन बाद शेरपा अंग श्रृंग के साथ शिखर पर पहुंच गई।

1749 में आज ही के दिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर का जन्म हुआ था, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स जैसी घातक बीमारी से बचाव के लिए टीके यानी कि वैक्सीन का आविष्कार किया था। ईयर 2010 में आज ही के दिन भारतीय मुक्केबाजों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी 6 स्वर्ण पदक अपने नाम करते हुए इतिहास रच दिया था। बीजिंग ओलंपिक में विजेंदर सिंह के अलावा दिनेश कुमार, परमजीत समोटा, अमनदीप और सुरंजय सिंह ने अपने अपने वर्ग का फाइनल जीता और सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर का अवार्ड विजेंदर कुमार को मिला।

2000 में आज ही के दिन रूसी संसद के ऊपरी सदन ने परमाणु परीक्षा प्रतिबंध संधि की मंजूरी प्रदान की। और ईयर 2010 में आज ही के दिन यानी 17 मई को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस एमएम कुमार और जस्टिस जतिंदर चौहान की खंडपीठ ने जोगिंदर कौर की याचिका पर पीजीआई चंडीगढ़ को दोषी ठहराते हुए कहा, नौकरी पर रहते विकलांगता को आधार बनाकर किसी कर्मचारी को मिलने वाले सेवा लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में उसे समान लाभ वाले पद पर रखा जा सकता है।

और आखिर में साल 2010 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने ओडिशा के विलियर्स द्वीप में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से परमाणु हमला करने वाले सक्षम अग्नि-2 मिसाइल का परीक्षण किया। अग्नि-2 मिसाइल का विकास DRDO की प्रयोगशालाओं और भारत डायनामिक्स हैदराबाद के साथ किया गया था।

श्रोताओ, कार्यक्रम मॉर्निंग इंफरटेनमेंट में आज के लिए बस इतना ही। आइए अब आपको ले चलते हैं कुछ हिंदी फिल्मी गीतों की ओर, आपका मनोरंजन करवाते हैं हमारे हिंदी फिल्मी गीतों से।

श्रोता, आप सुन रहे थे कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फरटेनमेंट और आपसे थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

आइए श्रोता, हम बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, यानी कि सदाबहार की ओर। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको बताएंगे आज के वेदर अपडेट्स ईटानगर के लिए एंड ईस्ट एंड वेस्ट अरुणाचल के लिए। वेदर कैसा रहेगा आइए जानते हैं।

आज यानी 17 मई को ईटानगर में भारी बारिश हो सकती है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहेगी और न्यूनतम रहेगी 22 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति 4 मील प्रति घंटा रहेगी, आर्द्रता रहेगी 100%। और आज पूरे दिन छाता और रेनकोट आपकी बेस्ट फ्रेंड बनने वाली है। सड़कें फिसलन भरी रहेगी और दोपहर 2 बजे के बाद गरज के साथ तेज बारिश की संभावना है।

जानते हैं ईस्ट अरुणाचल यानी कि पूर्वी अरुणाचल में कैसा रहेगा आज का दिन। आज पूर्वी अरुणाचल में भी बादल छाए रहेंगे, भारी बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति 7 मील प्रति घंटा बहेगी और आर्द्रता रहेगी 90%। आज पूर्वी अरुणाचल में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की वजह से नदी नालों में पानी भर सकती है और भूस्खलन भी हो सकता है, तो आप रेनकोट और छाता लेकर ही घूमिएगा।

और पश्चिम अरुणाचल की बात करें तो आज पश्चिम अरुणाचल में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसम रहेगा। कुछ इलाकों में तेज धूप रहेगी तो कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति 3 मील प्रति घंटा रहेगी और आर्द्रता रहेगी 90%। और ज्यादातर पश्चिमी अरुणाचल में आज

आपको भारी बारिश की संभावना है तो छाता लेकर निकलिए। दोपहर के बाद तेज गरज और बारिश से बचें, पहाड़ी रास्तों पर ना निकले। अगर आप गर्म इलाकों में हैं तो धूप से बचे और पानी पीते रहिएगा।

तो वेदर अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे हमारे लोकल डेली दे अरुणाचल टाइम्स से कुछ खास खबरों को, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाना चाहते हैं आपके मनोरंजन के लिए कुछ फिल्मी गीतों को।

श्रोताओं आइए, अब दी अरुणाचल टाइम्स से आपको कुछ ताजा खबरें सुनाते हैं। अरुणाचल इंडिजिनियस ट्राइब्स फोरम के चेयरमैन डॉ. बेंगिया तोलुंग का मृत शरीर शनिवार को काई पन्योर जिले के याजाली के परम में उनके घर पर गमगीन माहौल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दिवंगत डॉ. तोलुंग के एक बड़े सामाजिक नेता, सांप्रदायिक सद्भाव के दूत और पूरे अरुणाचली के तौर पर याद किया जाता था। कई जाने माने शोक मनाने वालों ने दिवंगत डॉ. तोलुंग को श्रद्धांजलि देते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उनके बेमिसाल कामों को याद किया। अंतिम संस्कार में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शोक मनाने वालों से दिवंगत डॉ. तोलुंग के पूरे अरुणाचल और सांप्रदायिक सद्भाव के सिद्धांत और विजन को मानने की अपील की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही एक जरूरी सरकारी संस्था का नाम दिवंगत डॉ. तोलुंग के नाम पर रखेगी। उन्होंने कहा कि वो कोई भी फैसला लेने से पहले परिवार वालों से इस बारे में बात करेंगे। नीट कैंसिलेशन विवाद के बीच कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार में रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अमृतकाल यानी कि मृत्यु का युग साबित

हो रहा है और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग की। अपोजिशन पार्टी ने दावा किया कि प्रधान इस काम के लिए बने हुए नहीं लगते हैं और कहा कि जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने सालाना परीक्षा पे चर्चा की बड़ी पब्लिसिटी करते हैं, वहीं परीक्षा की समीक्षा की जरूरत है। मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें परीक्षा लीक्स पे चर्चा करनी चाहिए और कहा कि सिर्फ चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। गवर्नर केटी पटनायक ने शनिवार को यहां लोकभवन की स्टाफ मेंबर मिंती दाकुया को कैश अवार्ड के साथ गवर्नर का साइटेशन दिया। उन्हें यह साइटेशन और 20,000 रूपये का कैश अवार्ड मिला क्योंकि उन्होंने समय पर एक्शन लिया, जिससे लोकभवन कॉम्प्लेक्स में एक बड़ी त्रासदी टल गई। 8 मई को शाम करीब 7:30 बजे दाकुया ने सेक्टर बी में पास के बिजली के खंभे से आग निकलती देखी। स्थिति की गंभीरता और आग के पास के घरों तक फैलने के खतरे को भांपते हुए उन्होंने तुरंत बिजली विभाग को बताया और लगातार फॉलोअप किया ताकि यह पक्का हो सके कि बिना देर किए बिजली की सप्लाई काट दी जाए। उनके तुरंत एक्शन ने एक बड़ी आग की दुर्घटना को टाल दिया।

9th स्टेट लेवल हंगपन दादा मेमोरियल फुटबॉल और वॉलीबॉल टूर्नामेंट अंडर 16 लड़के और लड़कियों के लिए शनिवार को वेस्ट सियांग जिले में शुरू हुआ। लड़कों की कैटेगरी में पहला फुटबॉल मैच होस्ट वेस्ट सियांग और शियोमी के बीच खेला गया, जो 1-1 से ड्रॉ रहा। पहले दिन कुल 7 मैच खेले गए, लड़कियों की कैटेगरी में 4 और लड़कों के सेक्शन में 3। लड़कियों की कैटेगरी में वेस्ट कामेंग नामसाई और अपर सुबनसिरी ने जीत दर्ज की। वेस्ट कामिंग ने पाके केसांग को 8-0 से हराया, जबकि नामसाई और अपर सुबनसिरी ने अपने अपने विरोधी सियांग और चांगलांग को 2-1 के बराबर अंतर से हराया। लोंगडिंग और करादादी के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ हो गया। लड़कों की कैटेगरी में सियांग और लोंगडिंग ने क्रमश ईस्ट सियांग और दिबांग वैली को 3-0 गोल से बराबर अंतर में हराया। इस टूर्नामेंट में ईटानगर कैपिटल रीजन समेत 28 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही है, जो 25 मई को खत्म होगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि अब समय आ गया है कि जुडिशरी आम आदमी के दर्द और उम्मीदों को तुरंत राहत देने वाले सिस्टम के जरिए दूर करे और जुडिशियल सिस्टम को अस्पतालों की तरह काम करने की जरूरत पर जोर दिया, जो 2400 घंटे काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जुडिशरी के समय की बर्बादी का एकमात्र असरदार जवाब टेक्नोलॉजी है और उन्होंने न्याय देने में तेजी लाने के लिए टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जुडिशियल आर्किटेक्चर को और मजबूत करने की बात करी। सीजेआई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में बोल रहे थे, जिसका विषय था फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन, एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन। उन्होंने हाईकोर्ट के नए बनाए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया।

श्रोताओ, कार्यक्रम सदाबहार में आज के लिए बस इतना ही, और अब से थोड़ी देर में आप ठीक 8 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात तथा मॉर्निंग न्यूज और शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। तो कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाने पर दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, बंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत के स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी आजादी के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के आर्थिक और क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और के लिए जा रहा है। सेवा इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी प्रमुख स्तंभ बन चुका है। मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: Have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे निर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
0: एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी ने संवाददाताओं से बातचीत कहा कि मुख्यमंत्री कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव, राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR या न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव, आकाशवाणी भोपाल।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक है। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ईशा मरे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजीगर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार मंत्रालय ने एक सूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% तक आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता

श्रोताओं, आप सुन पा रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज और शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। और श्रोताओं, आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: तो श्रोताओं, आप अरुण एफएम पर वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, यानी कि हेलो ईटानगर का। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। हेलो
1: हेलो ईटानगर।

श्वेता, अभी 2 दिन पहले ही हमारे राज्य में, हमारे स्टेट अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में एक संगठन जिनका नाम है एसटी बचाओ आंदोलन, इस संगठन ने 2 दिन का बंद कॉल करवा दिया था। उनकी मांग सरकार से ये थी कि अरुणाचल में बाहर से आने वाले लोगों की सही से चेकिंग की जाए और उन्हें बिना आईएलपी के अलाउ ना करें। अब आईएलपी के बारे में बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो आइए आज इस कार्यक्रम हेलो ईटानगर में हम जानते हैं आईएलपी क्या होती है।

हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जो प्रोटेक्टेड हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, जहां किसी भी सिटीजन को बिना परमिट के एंट्री नहीं मिलेगी। ये परमिट एक डॉक्यूमेंट होती है जो आप जिस स्टेट में आप जा रहे हैं उस स्टेट की गवर्नमेंट से आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेगी। इसे ILP यानी कि इनर लाइन परमिट कहा जाता है, और आप इस परमिट के जरिए ही आप उस स्पेसिफिक स्टेट में आप एंटर कर पाएंगे। तो श्रोताओं, ILP इनर लाइन परमिट क्या है ये तो आपने जान ली। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसे लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी और किन किन जगहों पे ये लागू है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाना चाहते हैं ये गीत, तो आप आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का।

अपने व्यापारिक हितों की रक्षा और विस्तार के लिए इस व्यवस्था को बनाया था। इसके तहत एक काल्पनिक इनर लाइन बनाई गई थी जिसके पार ब्रिटिश प्रजा यानी कि भारतीय लोग जो उस समय ब्रिटिश रूल के अंदर थे उनको बिना आधिकारिक पास के बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उस सदी में ब्रिटिश सरकार ने असम की पहाड़ियों में चाय, तेल और हाथी दांत के व्यापार का विस्तार किया था। वे नहीं चाहते थे कि अन्य ब्रिटिश या अन्य भारतीय व्यापारी इन क्षेत्रों में प्रवेश करें और उनके व्यापार को नुकसान पहुंचाए, और साथ ही वहां के आदिवासी क्षेत्र यानी कि वहां के ट्राइबल कम्युनिटीज में बाहरी लोगों के दखल से टकराव और अशांति पैदा होती थी। तो अंग्रेजों ने अलगाववादी नीति अपनाई ताकि स्थानीय जनजातियों की संस्कृति बची रहे और बाहरी लोग उनकी जमीन पर संसाधनों का शोषण ना कर सके। इसीलिए ये इनर लाइन बनाई गई और ये परमिट दिया गया। अब इंडिपेंडेंस के बाद भारत सरकार ने इस प्रणाली को समाप्त नहीं किया, बल्कि इसे एक दूसरे और एक बेहतर रूप देके इसे आगे बढ़ाया ताकि पूर्वोत्तर राज्य में आदिवासी संस्कृतियों, उनकी परंपराओं और जनसंख्या यानी कि उनके डेमोग्राफिक्स पहचान को बाहरी लोगों के अत्यधिक दखल से बचने के लिए जारी रखा है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल लोग हैं उनके क्षेत्र, उनकी यूनिक कल्चर को बाहरी प्रभाव से बचाने के लिए इसे जारी किया गया है, ताकि बाहर के लोगों द्वारा जो वहां पे ट्राइबल्स हैं उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा या अंधाधुंध खरीद फरोख्त को रोकने के लिए आईएलपी लागू किया जाता है और बाहर के लोगों का एक्सेसिव माइग्रेशन, माइग्रेट करके जो इन राज्यों में बस जाते हैं, इनके कारण राज्य के जो इंडिजिनस लोग हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो इन सारे चीजों को बचाने के लिए ये लागू किया जाता है। और इस तरह के राज्य जो संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स के जो निकट होते हैं, इनमें बाहरी लोगों की आवाजाही को ट्रैक करना और रेगुलेट कर पाए, इन सारे मामलों के लिए आईएलपी की सख्त जरूरत होती है।

और वर्तमान में अगर ILP की बात करें तो भारत में ये नॉर्थ ईस्टर्न के 4 स्टेट्स में ये लागू है। ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। और हमारे जो आइलैंड टेरिटरीज है यानी कि लक्षद्वीप है, इनमें भी आपको ILP की जरूरत पड़ेगी लक्षद्वीप में जाने के लिए। अंडमान निकोबार में आपको कोई स्टैंडर्ड ILP की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं जहां पर आपको परमिट की जरूरत पड़ेगी। तो श्रोता, हमारे अरुणाचल के लोग भी इसी चीज को लेकर, इसी मामले को लेकर उन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया था कि अरुणाचल में बहुत सारे बाहरी लोग जो है बिना प्रॉपर ILP के आ बसे हैं और यहाँ पर जमीन, हमारे जमीनों में रहकर यहाँ पे कारोबार भी चला रहे हैं। तो हमारे जो अरुणाचल के लोग हैं वो सरकार से क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसको, इसका जल्द से जल्द कोई सलूशन निकाला जाए। अब देखना ये रहेगा कि सरकार इसका किस तरीके से सलूशन देती है।

तो श्रोता दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आईएलपी के बारे में ये कुछ जानकारी आपको हासिल हुए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। तो कार्यक्रम हेलो ईटानगर में आज के लिए बस इतना ही। आइए श्रोता, अब आगे आपके मनोरंजन के लिए

श्रोता, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो ईटानगर। आपसे थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। पीठ ने कहा कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग से भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां, सुझाव एकत्र कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों के विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नोडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to a level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors including trade, defence, technology, water management,

श्रोताओं, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 MHz पर। अरुण एफएम, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
1: प्यार भरे अल्फाजों में
0: दिल से दिल की बात
1: बस आपके नाम
0: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम फिल्मी गपशप का। इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खबरों को, ओटीटी अपडेट्स को, न्यू रिलीजेस को। चलिए श्रोताओं, शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। पहला न्यूज हम आपको बताने वाले हैं संजय दत्त की आने वाली अगली फिल्म के बारे में। संजय दत्त के बारे में माना जाता है कि उनकी प्रतिभा का ठीक से उपयोग नहीं हो सका, बार बार जेल यात्रा बड़ी बाधा बनी। हालांकि फिल्म साजन, सरक से लेकर खलनायक, वास्तव और मुन्ना भाई सीरीज ने संजय दत्त ने सबको चौंकाया है। लेकिन हाल ही के सालों में जिस तरह के रोल वो कर रहे हैं, संजय दत्त क्या उनके अपने एक्टिंग के आधार पर अपना इतिहास दोहरा पाएंगे, ये जानना बाकी है। संजय दत्त की पर्सनैलिटी, चेहरा और आवाज उनके एक्टिंग की यूएसपी है, जिसका बड़ा प्रशंसक वर्ग रहा है। कॉमिक और कैरेक्टर रोल से लेकर खूंखार विलेन तक के रोल को बड़े बखूबी निभाया है। धुरंधर 1 और धुरंधर 2 में एसपी असलम चौधरी के बाद राजा शिवाजी में उनके अफजल खान वाले रोल ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। संजय दत्त अब करीब 66 साल के हो चुके हैं, लेकिन पर्दे पर चुस्ती फूर्ती उनके 31 साल पहले जैसी नजर आती है। इस मामले में वो अनिल कपूर से बहुत कमतौर नहीं लगते, जो उनके अब 70 साल के होने वाले हैं। संजय दत्त की आने वाली अगली फिल्म आखिरी सवाल की कहानी क्या है, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना असर डाल सकेगी, ये रिलीज के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आखिरी सवाल के ट्रेलर से जाहिर होता है कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। इसके केंद्र में आरएसएस, आपातकाल और अयोध्या के विवादित ढांचे का विध्वंस जैसे मुद्दे हैं। यानी विषय की समयवादी मोटे तौर पर 1975 से लेकर 1992 तक की हो सकती है। फिल्म आखिरी सवाल के साथ ही संजय दत्त अपनी पुरानी कल्ट मूवीज के सीक्वल में भी नजर आने वाले हैं। 1993 में उनकी गिरफ्तारी के समय आई सुभाष घाई निर्देशित फिल्म खलनायक का सीक्वल आने वाला है। इसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। फिल्म में खतरनाक अपराधी बने बल्लू बलराम की नई झलक भी सामने आ चुकी है। इसी के साथ संजय दत्त की एक और कल्ट मूवी की फिलहाल चर्चा है, वो है वास्तव। मुंबई अंडरवर्ल्ड के अपराध की कहानी पे संजय दत्त के किरदार ने सबको चौंकाया था, लेकिन सीक्वल में इन फिल्मों की कहानी क्या होगी, संजय दत्त का किरदार कैसा होगा, वो उस पर अभी पर्दा है। तो आइए श्रोता, इसी पर आपको सुनवाते हैं संजय दत्त के कुछ फिल्मों के गीतों को।

नानावती हॉस्पिटल आ रहे लाओ, लीलावती हॉस्पिटल जा रहे लाओ, जे हॉस्पिटल आ रहे लाओ, मेरे बाप, अरे किधर किधर, अरे ब्रीच कैंडी, होल्ड मैन होल्ड, आई एम बिजी यार।

श्रोता दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गपशप की ओर। इस साल कई बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है और शुरुआत भी हो चुकी है, पर इन सारे फ्रेंचाइजी फिल्मों का अभी इंतजार है। अब तक अजय देवगन की कोई भी पिक्चर रिलीज नहीं हुई है, पर सबसे पहले धमाल 4 रिलीज होने वाली है। लेकिन आज हम बात करेंगे अक्टूबर में रिलीज होने वाली दृश्यम 3 के बारे में, जिसे लोग अजय देवगन के लिए बहुत बड़ा रिस्क और खतरा भी बता रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि मोहनलाल, जिनकी ओरिजिनल फिल्म है, वो अपनी फिल्म को 21 मई को ही रिलीज कर रहे हैं। ओरिजिनल फिल्म अभी आ जाएगी और सेम कहानी के साथ दृश्यम 3 का हिंदी वर्जन भी अक्टूबर में आने वाला है, तो फिर खतरा तो रहेगा ही। पर रिलीज से पहले ही अजय देवगन ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया है। दरअसल अजय देवगन की फिल्म के मेकर्स भी चाहते थे कि दृश्यम 3 का हिंदी वर्जन भी साथ में ही लाया जाए, लेकिन मोहनलाल के फिल्म मेकर्स से बात नहीं बनी और मोहन और मलयालम फिल्म को अब और भी जल्दी रिलीज किया जा रहा है। और इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने बताया कि दृश्यम 3 के हिंदी वर्जन पर उनकी शूटिंग पूरी हो चुकी है, कुछ पैचवर्क का काम बच गया है और इसे अब 2 अक्टूबर को रिलीज करेंगे। फिल्म को लेकर काफी उत्साह है। लोग अभी मलयालम दृश्यम में जो देख रहे हैं वो अलग है। हिंदी दर्शकों के लिए उन्होंने एक बिल्कुल अलग ट्रैक बनाया है जो यहाँ बहुत अच्छा काम करेगा। वो कहते हैं कि मलयालम वर्जन में फैमिली ड्रामा पर ज्यादा जोर दिया गया है, जबकि हिंदी वर्जन में फैमिली थ्रिलर की तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा। अब ट्रेलर रिलीज होगा तो दर्शकों को पता चलेगा कि ये दोनों दुनिया कितनी अलग है। आइए श्रोता, अब आपको सुनाते हैं अजय देवगन से जुड़ी उन पर फिल्माया गया कुछ हिंदी फिल्मी गीतों को।

प्यारे श्रोताओं, आप बने हुए हैं हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी कक्षा। कार्यक्रम फिल्मी कक्षा में हम आगे आपको बताना चाहते हैं कि जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो का मजेदार और इमोशनल ट्रेलर मंगलवार को रिलीज हो गया है। ये मूल रूप से एक फैमिली ड्रामा फिल्म है जो साइंस फिक्शन एडवेंचर को दिलचस्प अंदाज में जोड़ती है। 2 मिनट और 33 सेकंड का ये ट्रेलर अपने पहले ही सीन से आपका दिल चुराता है, गुदगुदाता है, धीरे धीरे आपको इसके किरदारों से प्यार हो जाता है और ट्रेलर खत्म होने के बाद एलियन के आगमन तक आप दादा पोते की जोड़ी के फैन बन जाते हैं। कहना होगा कि नेशनल अवार्ड जीत चुके फिल्म मेकर मनीष सैनी न सिर्फ एक अनूठी कहानी लेकर आए हैं बल्कि उन्होंने एक कॉमिक के किरदारों को बच्चों की मस्ती में ऐसा जोड़ा है जो आपका दिल लूट ले जाएगा। जी स्टूडियोज और अहमदाबाद फिल्म के बैनर तले बनी द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो एलियंस का आगमन। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ के अलावा प्रतीक, स्मिता पाटिल, भाग्यश्री दासानी, शरद सक्सेना, मिहिर गोडबोले, दुर्गेश कुमार, साहर्ष शुक्ला, शिवांश चोरगे और कुमार सौरभ भी हैं। यह फिल्म

29 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म का ट्रेलर मजेदार है जबकि इसकी कहानी दिलचस्प है। इसमें शक्तिमान, करण अर्जुन और कोई मिल गया के किरदार जादू जैसे मशहूर रेफरेंस है जो पुरानी यादों को ताजा करती है। कहानी में दादा और पोते की जोड़ी है। पोता स्कूल जाता है, वो अपने दोस्तों के बीच परिवार से जुड़ा एक बड़ा राज बताता है। उसके दादाजी यानी जैकी श्रॉफ का किरदार असल में धरती के आखिरी छिपे हुए सुपरहीरो है। पोता सबको बताता है कि उसके दादा चुपचाप धरती को एलियंस के आने वाले खतरे से बचा रहा है। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर दोनों मनीष सैनी हैं, जबकि उमेश कुमार बंसल और मनीष ने इसे प्रोड्यूस किया है। आकाश जे एच शाह, रेडिता टंडन और अमृता परांदे को प्रोड्यूसर है। जिस दौर में बॉक्स ऑफिस पर खून से सनी खतरनाक एक्शन वाली फिल्में ही धूम मचा रही है, वहां द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो कितनी कमाई करेगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ट्रेलर देखकर यही लग रहा है कि दिल को छू लेने वाली कहानी है। दमदार एक्टिंग और भावनाओं से भरी ये अनोखे सुपर हीरो वाली फिल्म जरूर दिल जीतेगा। तो आइए दोस्तों, इसी बात पर आपको जैकी श्रॉफ पर फिल्माए कुछ गीतों को हम सुनवाते हैं।

बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी गपशप, और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। पीठ ने कहा कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग से भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि सोने और प्लेटिनम से बड़ी मड़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए लिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कॉर्निलो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors including trade, defence, technology, water management, clean energy, healthcare and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, PM Modi said that India and Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners. Prime Minister Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson to review the entire gamut.

रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।

तो प्यारे श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आप सभी के फेवरेट कार्यक्रम रेडियो डिमांड में। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले मैसेज की ओर। ये पहला मैसेज हमें भेजते हैं हर्षित गोस्वामी। ये रहते हैं बोकाखत आसाम में और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सॉन्ग सुबह होने ना दे। तो हर्षित जी, चलिए आपके लिए और हमारे बाकी सारे लिसनर्स के लिए हम प्ले करते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत।

अरे श्रोताओं, लेते हैं हमारा अगला मैसेज। ये मैसेज हमें भेजते हैं सत्यजीत सुतिया, जो रहते हैं लालुक आसाम में। और वो लिखते हैं कि मुझे कोई भी सा भी गाना सुना दो फिल्म विवाह का। तो सत्यजीत जी, हम आपके डिमांड को पूरा करते हुए आपको सुनवाते हैं फिल्म विवाह का ये बेहद ही खूबसूरत गीत, उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में। तो आइए हम मिलकर सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

प्यारे श्रोताओं, आप बने हुए हैं हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं आप सभी के फेवरेट कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड को। तो श्रोताओं, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले मैसेज की ओर। ये मैसेज हमें भेजते हैं जिरेन तेरोन, जो रहते हैं कार्बी आंगलोंग में, और वो सुनना चाहते हैं फिल्म फूल और अंगार से गाना मुझको पीना है। तो जिरेन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें मैसेज करने के लिए। तो चलिए, आपके लिए और हमारे बाकी सारे लिसनर्स के लिए हम प्ले करते हैं आपका ये रिक्वेस्टेड सॉन्ग।

अगला मैसेज हमें भेजते हैं गुमे माई बागरा, जो रहते हैं हीगी बागरा विलेज में, और वो सुनना चाहते हैं फिल्म साथी का सॉन्ग हुई आंखनम। तो गुमे माई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपने ये सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है। तो आपके लिए देर न करते हुए, आपके लिए और हमारे बाकी सारे लिसनर्स के लिए हम प्ले करते हैं आपका ये पसंदीदा गीत।

चलो श्रोता, कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में जल्दी से लेते हैं हमारा अगला मैसेज। ये अगला मैसेज हमें भेजते हैं जोगेंद्र रोंगपी, दरम किरी रोंगपी और सोनाली इंतपी। और ये सारे हमारे लिसनर्स जो है ये रहते हैं सरी हजन कार्बी आंगलोंग आसाम में। और वो लिखते हैं, नमस्कार अरुण एफएम की आरजे दीदी, आप सभी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और वो सुनना चाहते हैं फिल्म बरसात की एक रात से ये गीत नदिया किनारे। तो हमारे इन सारे साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि इस गाने को वो डेडिकेट करना चाहते हैं अपने कुछ दोस्तों को। उनके दोस्तों के नाम हैं अमल बासुमातरी, बितोई, बाइकोन मुंडा, रमेश पात्रो और रूनू पात्रो। तो हमारे इन सारे प्यारे लिसनर्स के लिए जो हमें हमेशा मैसेजेस भेजते रहते हैं, सॉन्ग्स डिमांड्स भेजते रहते हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए हमारे इन प्यारे लिसनर्स के गीतों को आप सभी को सुना देते हैं।

प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड, आपके रेडियो साथी बाविन सुम्पी के साथ। इस कार्यक्रम में जहां हम आपके सॉन्ग रिक्वेस्ट, आपके डिमांड पूरा करते हैं, और हमारे सारे श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें हमें मैसेजेस भेजते हैं। हमें उम्मीद है आपके मैसेजेस को हमने अच्छी तरह से पढ़ा और आपके फेवरेट सॉन्ग्स को हमने प्ले किया। हमें उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा होगा, और साथ ही हमारे कई सारे लिसनर्स होते होंगे जो इस वक्त हमें पहली दफा सुन रहे हो। तो आपसे हम ये गुजारिश करते हैं कि आप ही हमें मैसेजेस करिए। अगर आप हमें मैसेज लिखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमें भेजिए, 9436887808 पर, 9436887808 पर। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, पता और अपने रिक्वेस्टेड सॉन्ग के साथ हमें मैसेजेस करिए। हमें आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। तो श्रोताओ, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हमारा अगला मैसेज। ये मैसेज जिन्होंने भेजा है उन्होंने अपना नाम तो नहीं दिया, वो बस अपना सॉन्ग रिक्वेस्ट करके कहीं गायब हो गए हैं। तो हमारे ये लिसनर जिन्होंने हमें मैसेज भेजा है, चलिए हम आपका रिक्वेस्टेड सॉन्ग अब प्ले करते हैं। आप सुनना चाहते हैं फिल्म हैप्पी भाग जाएगी से आशिक तेरा सॉन्ग।

अगला मैसेज हमें ये भेजते हैं बितुल, जो रहते हैं जोरहाट आसाम में, और वो सुनना चाहते हैं गीत अगर तुम साथ हो। तो बितुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए आपको सुनवा देते हैं आपका ये रिक्वेस्टेड सॉन्ग।

मैं माफी चाहती हूँ बितोल जी, हमारी ओर से छोटी सी गलती हो गई है। हम इस वक्त आपको आपका रिक्वेस्टेड सॉन्ग नहीं सुना पा रहे हैं, तो उसकी जगह हम आपको अपनी ओर से एक दूसरी एक प्यारी सी गीत सुनाते हैं।

0: तो श्रोताओ, ये था कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड का आखिरी गीत, और इसी के साथ ही समाप्त होता है हमारा पहला प्रसारण सभा। अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। उसके तुरंत बाद हमारे दूसरे ट्रांसमिशन के लिए आपके साथ जुड़ेंगे आरजे नोरा। तो अब मुझे आपकी रेडियो साथी बामिन सुम्पी को दीजिए इजाजत, पर आप सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz पर।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने, यांत्रिक मेधा, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार 2025 में रिकॉर्ड 7.75 अरब डॉलर का रहा, और वर्ष 2000 से 2025 के बीच स्वीडन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2.8 अरब डॉलर से अधिक का रहा। प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के बीच कल हेग में हुई वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक तथा रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति जिले के येरुपेडु में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in India-Sweden relations. He will hold bilateral talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. The two leaders will also address the European Roundtable for Industry alongside European Commission President Ursula von der Leyen. This visit is the third leg of Prime Minister Modi's UAE and European tour and his first to Europe since the India-EU Free Trade Agreement took effect in January 2026. Bilateral trade reached a record $7.75 billion in 2025, with Swedish investment in India totaling over $2.8 billion between 2000 and 2025. The partnership was strengthened during Mr. Modi's 2018 visit, which led to the Joint Innovation Partnership for a Sustainable Future. Yesterday, in the second leg of the Prime Minister's tour, India and the Netherlands have agreed to elevate their bilateral relationship to a strategic partnership following talks between Prime Minister Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. The leaders reviewed cooperation across trade, defense, technology, water management, clean energy, healthcare and education. Several agreements were signed to strengthen collaboration in key areas. Dutch Prime Minister

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण।
1: श्रोता दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आकाशवाणी के FMN 103.1 MHz अरुण FM पर। और स्टूडियो में दूसरी प्रसारण सभा के सफर को आगे ले जाने के लिए मैं पहुंच चुकी हूं, यानी कि आपकी अपनी रेडियो साथी आरजे नूरी। तो श्रोता दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, और आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। नई ऊर्जा, नई मुस्कान और ढेर सारी मधुर यादों के साथ स्टूडियो में मैं हूं, और मेरे साथ स्टूडियो में आप सब तक सारे कार्यक्रमों को सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए मौजूद है प्रसारण अधिकारी पी दोले और हमारे तकनीकी अभियंता टिम टिम जी, जो हर प्रसारण को श्रोताओं तक बेहतरीन ढंग से पहुंचाने

0: में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी हमारी बहुत ही प्यारी सी आरजे आप सभी के साथ पहली प्रसारण सभा में मौजूद थी, बेहद खूबसूरती से आगे बढ़ाने वाली, और हमें स्टूडियो को प्यार से सौंपने के लिए आरजे सुम्पी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, वक्त हो चला है आज के पहले कार्यक्रम का, जिसका नाम सुनते ही दिल में संगीत की हलचल होने लगती है। जी हाँ, फिल्मी लहर कार्यक्रम, और हमारे जो रेगुलर श्रोता है इस कार्यक्रम को बहुत पसंद करते हैं और हम भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आप पसंद करते हैं हमारे इस शो को और हमारे चैनल को इतना सारा प्यार करते हैं, उसके लिए शुक्रगुजार तो है ही। साथ ही साथ आज रविवार के दिन चाय की प्याली हाथ में लिए अपने अपनों से घिरे हुए भी बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, और इनको यही इंतजार रहता है कि सारे जो उनके फेवरेट प्रोग्राम्स है वो कब लाइव होंगे। और बहुत सारे हमारे श्रोता दोस्त ये भी लिखते हैं कि आरजेस का इंतजार बेसब्री से रहता है, और कभी कभी हम अपने आसपास ढेर सारे लोगों और भीड़ में रहते हुए भी किसी ऐसे खास की मौजूदगी का हम इंतजार करते हैं, और वो है अरुण एफएम के कुछ आरजेस। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोता दोस्तों को जिन्होंने हमारे इस चैनल को इतना प्यार दिया, क्योंकि हम करते हैं दिल से, दिल की बात गीतों के माध्यम से। तो दोस्तों, फिल्मी लहर एक ऐसा कार्यक्रम जहां होंगे बॉलीवुड के सदाबहार गीतों का गुलदस्ता सजेगा, और फिल्मी दुनिया की दिलचस्प बातें, कुछ मुस्कुराते किस्से, और अपने साथ मेरी यानी आरजे नूरी की प्यारी प्यारी बात। चलिए, प्यारी प्यारी बातें तो हम करते ही रहते हैं, साथ ही साथ मिलकर सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी लहर का ये पहला गीत।
1: Now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.

श्रोता दोस्तों, आप बने हुए मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर, जहां आप आनंद उठा रहे हैं फिल्मी लहर का यह संगीतमय सफर। चलिए सफर को आगे जारी रखते हैं और सुनते हैं ये अगला।

0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेडू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden. He will hold bilateral talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action and people-to-people ties. The two leaders will also address the European Roundtable for Industry alongside European Commission President Ursula von der Leyen. This visit is the third leg of Prime Minister Modi's UAE and European tour and his first to Europe since the India-EU Free Trade Agreement took effect in January 2026. Yesterday, in the second leg of the Prime Minister's tour, India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to a strategic partnership following talks between Prime Minister Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. India has strongly condemned attacks on commercial shipping in the Strait of Hormuz, calling them unacceptable. India's permanent representative to the UN, P. Harish, said targeting civilian crew and disrupting freedom of navigation cannot be justified. He was speaking at a special meeting of the United Nations Economic and Social Council on safeguarding global energy and supply flows.
3: Targeting of commercial shipping, endangering civilian crew, impeding freedom of navigation in the Strait of Hormuz are unacceptable. International law in this regard must be fully respected. Open and predictable trade flows must be preserved and fragmentation avoided. Coordinated efforts are needed to stabilize energy markets and support countries facing external and fiscal pressures. Strengthening multilateral financial support mechanisms will also be critical in this regard. This crisis underscores the importance of combining immediate response with long-term transformation.
2: Mr. Harish's remarks came days after an India-flagged commercial vessel was attacked off the coast of Oman. Within days of levying high customs duties on precious metals, the government has imposed import curbs on silver. The Directorate General of Foreign Trade in a notification said the import policy for silver, including silver plated with gold and platinum, are revised from free to restricted with immediate effect. A major rail accident was averted in Ratlam, Madhya Pradesh this morning. Fire broke out in the B1 coach of the Thiruvananthapuram Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express, train number 12431. The incident took place between Luni Richa and Vikramgarh Alot stations in the Kota division at around 5:20 a.m. Ratlam Railway Division's Public Relations Officer Mukesh Kumar informed there has been no casualty in this incident. All passengers in the coach were safely evacuated. No passenger or railway staff was injured. The cause of the fire is being investigated. The field operations for the house listing and housing census under Phase 1 of Census 2027 have commenced in 5 states and union territories. These states and union territories are Rajasthan, Meghalaya, Maharashtra, Jharkhand and Municipal Corporation of Delhi area in Delhi NCT as part of the ongoing nationwide census exercise. Meanwhile, house-to-house house listing operations by enumerators are presently in progress in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Telangana and Uttarakhand. The World Health Organization, WHO, has declared the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo and Uganda a public health emergency of international concern. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus announced the decision after more than 300 suspected cases and 88 deaths were reported. WHO, in a social media post, clarified the outbreak does not meet the criteria for a pandemic emergency like COVID-19 and advised against closing international borders. World Hypertension Day is being observed today globally. The theme for this year is Controlling Hypertension Together. Check your blood pressure regularly. Defeat the silent killer. The India Meteorological Department said that the southwest monsoon has advanced into some parts of Arabian Sea, Bay of Bengal, many parts of Andaman Sea and Andaman Islands and entire Nicobar Islands. According to the IMD, southwest monsoon is likely to set in over Kerala on 26th of this month. Meanwhile, the weather agency has predicted heat wave conditions in Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha tomorrow. And that is the end of this news bulletin.

श्रोता दोस्तों, आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार के बाद आपका स्वागत करते हैं इस खूबसूरत प्रोमो गीत के साथ, जिसे गाया है बेहद ही फेमस अरुणाचल में हमारे जो सिंगर्स हैं, उसने इस गीत को खूबसूरती से गाया है अरुण एफएम के नाम से। दोस्तों, इस गीत के साथ ही हम आपका स्वागत करते हैं आकाशवाणी के ईटानगर के एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण एफएम पर, और सुनेंगे हिंदी फिल्मी गाने। दोस्तों, यह हिंदी फिल्मी गानों का सफर, चलिए आज करते हैं कुछ खास। हिंदी गानों के साथ साथ हम ऐसी बातें करेंगे जिससे आपको भी पता चलेगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी हमारे सितारे हैं, जो चमकने से पहले बहुत लंबी अंधेरी सुरंग से गुजरे हैं, और उस अंधेरी सुरंग से गुजरने के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारे और आज हमारे दिलों में बसते हैं, और आज हम उन्हें सितारा कहते हैं, यानी कि सुपरस्टार्स कहते हैं। दोस्तों, ये कड़ी है बॉलीवुड की असली जमीन पर जमी कहानियों की। कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है, न ड्रामेबाजी है इसमें, बस सच और उसकी ताकत है। तो आप भी आराम से बैठ जाइए, चाय कॉफी का कप पकड़ लीजिए और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी स्टेज शो वाले रो पटाखे के, सिर्फ और सिर्फ इंसानों की जिंदगी की कहानियों के साथ हिंदी फिल्मी गानों का सफर मेरे साथ, यानी आरजे नूरी के साथ। और शुरू करेंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी से। कहानी को हम यूं कहेंगे कि मरीन ड्राइव की बेंचों से लेकर महानायक तक का सफर। कल्पना कीजिए उस रात की, जहां ठंडी हवा, ऊपर सिर्फ सितारे और नीचे एक लड़का, थका हुआ, भूखा, लेकिन अंदर से जलता हुआ। यह लड़का है वही जिसे आज हम महानायक कहते हैं। जी हां, अमिताभ बच्चन, द सुपरस्टार, द मेगा स्टार। जब अमिताभ बच्चन मुंबई आए थे तो उनके पास न पैसे थे न ठीक ठाक रहने की जगह। कई रातें उन्होंने मरीन ड्राइव की उन्हीं बेंचों पर बिताई, जहां आज लोग कई सारे नाटक करते, यानी कि एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, दोस्ती की कस्में खाते हैं और लंबी गप्पे शप्पे करते हैं। ऑडिशन बार बार रिजेक्ट होते रहते थे। पहली कमाई लगभग सिर्फ 300 रुपए थी, और फिर भी उनके अंदर वही आवाज थी, मैं यहां रुकने नहीं आया हूं, ऊपर जाने के लिए आया हूं और मैं जा रहा हूं। और दोस्तों देखिए, उसी आवाज ने बाद में तकदीर बदल दी। महानायक बनने तक का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन यह बात जरूर सच है, जब इंसान अपने आप पर भरोसा नहीं खोता तो मौके उसके पीछे भागते हैं। तो अमिताभ बच्चन द सुपरस्टार, द मेगा स्टार, यानी कि महानायक की जिंदगी से हम यही सीख लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन और अपने आप पर भरोसा, सेल्फ बिलीफ, आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। तो श्रोता दोस्तों, जो इस वक्त मेरे साथ सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गाने और सच्ची कहानी हमारे सुपरस्टार्स की, आप भी अपने आप पर भरोसा रखें और सेल्फ मोटिवेशन जरूर रखें। तो चलिए सुनते हैं अमिताभ बच्चन के फिल्म का ये खूबसूरत ही फुट टैपिंग सॉन्ग।

बात बॉलीवुड की और हिंदी फिल्मी गानों की और बादशाह का जिक्र ना हो ये कैसे हो सकता है। श्रोता दोस्तों बने हुए हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से और हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स के सफर में। मैं हूं आप सबके साथ आरजे नूरी। दोस्तों बात करते हैं बॉलीवुड के उस बादशाह की जिन्होंने आज दुनिया भर में शाहरुख खान के नाम से अपना जलवा बिखेर रखा है। दोस्तों शाहरुख खान की शुरुआत आसान नहीं थी। मुंबई आने के बाद ऑडिशन आते थे तो उनके पास रोजगार नहीं था, तो उन्होंने दिल्ली के दरियागंज में एक छोटा रेस्टोरेंट का व्यवसाय शुरू किया, लेकिन यह बिजनेस भी फ्लॉप रहा। शाहरुख की पहली कमाई एक कॉन्सर्ट में काम करके महज 50 रुपए कमाई करके हुआ, लेकिन जिद नहीं छोड़ी। लगातार ऑडिशन, छोटे काम भी धीरे धीरे टीवी और फिर फिल्म में। आज वो दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स में से एक है और आज दुनिया भर में भारत का नाम शाहरुख खान के नाम से भी जानते हैं। और जब कोई विदेश घूमने के लिए जाता है तो जब वो कहते कि मैं भारतवासी हूं या इंडियन हूं, तो कहते शाहरुख खान। ये होता है अपने ऊपर भरोसा करने का नतीजा। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी एक असफल बिजनेस या छोटी कमाई को अपनी पहचान न माने, क्योंकि लगन और जिद मिलकर किसी भी फील्ड में जादू कर सकती है और शाहरुख खान ने कर दिखाया। छोटी छोटी मुश्किलों से न घबराते हुए उन्होंने टीवी की तरफ रुख किया और टीवी में भी कई सारे शानदार काम किए, जैसे कि सर्कस हो गया, फौजी हो गया। उसके तुरंत बाद वो फिल्मों में धीरे धीरे धीरे अपना छाप छोड़ने लगे और आज शाहरुख खान बना बॉलीवुड। तो दोस्तों अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने टैलेंट पर जरूर भरोसा रखें और उस पर काम करें सिस्टमेटिकली। अगर अपने टैलेंट को हम इस्तेमाल करेंगे ना, हमें मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो बॉलीवुड यानी कि हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स के कार्यक्रम में हम बातें और चर्चा कर रहे हैं सच्ची बातें सच्चे लेसन्स। तो चलिए शाहरुख खान की फिल्म का ये खूबसूरत गीत आप सबके नाम।

चलिए एक ऐसी कहानी बताते हैं आपको, एक ऐसे अभिनेता की जिसे आज नट का नट या सिनेमा का रत्ती भर भरोसेमंद चेहरा कहा जाता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाज गांव से आए थे, विज्ञान से ग्रेजुएट, लेकिन नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने केमिस्ट की दुकान पर जॉब भी की। उसी दौरान उनका दिल थिएटर और अभिनय की तरफ खींचा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना चाहते थे लेकिन फीस जमा करनी थी, तो उन्होंने रात भर दिल्ली के शाहदरा में चौकीदारी की। कुर्सी पर बैठे, दिमाग में एनएसडी, रात में जिम्मेदारियां और सुबह फिर नए सपने। एनएसडी में उनकी एक्टिंग इतनी तेज चमकी कि आज वह उन चुनिंदा अभिनेताओं में शामिल है जिन पर निर्देशक सिर्फ यह भरोसा रखते हैं कि वे जो भी भूमिका देंगे असली लगेगी। यह कहानी हमें याद दिलाती है, प्रोफेशन कुछ भी हो, अगर जुनून इतना गहरा हो कि रात तो सितारे बनने की जो उम्मीद है, वो रात रात चौकीदारी भी इसका हिस्सा बन गए। तो वही इंसान एनएसडी के हॉल और बाद में बड़े बड़े इंटरनेशनल फेस्टिवल्स तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, यही है कहानी ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन की, और आज उनकी नेचुरल एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। एक कमर्शियल हीरो के चेहरे नहीं भी लगते हैं, लेकिन आज लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, दर्शक उन्हें देखना पसंद करते हैं। एक्टिंग इतना नेचुरल कि उनको लगता है कि वो हमारे में से ही कोई है। तो ये थे आज के कुछ ऐसे चमकते सितारे जिन्होंने सुरंग के अंधेरी गली से निकलकर आसमान पर चमकते सितारे बनने तक का सफर तय किया। हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स में बस इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 MHz पर, और सुनते हैं हमारे फौजी भाइयों और बहनों के लिए सजाया गया दैनिक कार्यक्रम गीतमाला।

श्रोता दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष रेडियो कार्यक्रम फौजी भाई और बहनों के लिए गीतमाला। दोस्तों, सफर में मैं हूं आप सब के साथ आज इंदुरी। तो आज भी इस संगीतमय कार्यक्रम में याद करते हैं उन वीरों को जो हमारी सुरक्षा में सीमाओं पर तैनात है, और साथ ही हम याद करते हैं उन बहनों को जो सेना में रहकर चिकित्सा, संचार, प्रशासन और हर मोर्चे पर देश का सेवा कर रही है। दोस्तों, यह कार्यक्रम समर्पित है आप सभी जांबाजों को, आपकी हिम्मत, आपके साहस और आपकी निष्ठा को। कहा गया है, जहां हौसला हो वहां जीत निश्चित होती है, और हमारे फौजी भाई बहन इस बात को हर दिन सच करके दिखाते हैं। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं कुछ मधुर गीतों के साथ जो उनके लिए समर्पित होगा। तो श्रोता दोस्तों, सुनते हैं ये पहला गीत हमारे फौजी भाई और बहनों को समर्पित।

दोस्तों आप मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ सुन रहे हैं हमारे फौजी भाइयों और बहनों के लिए सजाया गया दैनिक कार्यक्रम गीतमाला। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम पेश करते हैं उनके लिए ढेर सारे फिल्मी गाने। दोस्तों कहते हैं ना कि कुछ गीत सिर्फ गीत नहीं होते, वो भावनाओं के दर्पण होते हैं। तो उनकी भावनाओं के दर्पण हम खोल रहे हैं आज गीतमाला के रूप में, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए अगला खूबसूरत गीत।

0: और दोस्तों, जब बात अपने जवान जवानों की हो तो हर धुन में देशभक्ति का रंग और भी गहरा हो जाता है। जब जब हम बातें करते हैं उनकी निष्ठा की, उनकी हिम्मत की और उनकी डेडिकेशन की, तो पेश है अगला गीत जो उन कदमों के लिए है जो बर्फीली चोटियों, तपते रेगिस्तानों और कठिन पहरेदारी में भी डगमगाते नहीं है और उनके मन में देशभक्ति के भावनाओं से भरे बस यही भावनाएं होती है। और हम उन हमारे सारे फौजी भाइयों और बहनों को नमन करते हुए कार्यक्रम गीतमाला के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से उनको सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं उनकी डेडिकेशन के लिए।
1: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को

दोस्तों, कार्यक्रम गीतमाला हमारे फौजी भाई और बहनों के लिए सजाया गया दैनिक कार्यक्रम है आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर। और जब यह कार्यक्रम आप तक पहुंच रही है, हमारे एक फौजी भाई कहते हैं कि रेडियो की पहुंच दूर दराज इलाकों तक उसकी आवाज के माध्यम से हमारे दिल तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया। जहां इंटरनेट ढंग से नहीं चलता, यानी कि इंटरनेट की रफ्तार बहुत ही कम है और यहाँ जिंदगी बहुत धीमी है, और हम देश की सेवा कर रहे हैं, और बड़े गर्व के साथ जब कोई हमारे लिए ऐसा कार्यक्रम सजाता है जिसे हमारा मन भी बहला रहे और हमारा जुड़ाव अपने घर वालों से, अपने वतन वालों से रहे, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और सुनते हुए ये कहते हैं कि इसकी आवाज में वो जादू है जो सीमाओं से परे जाकर पहाड़ों, मैदानों, गांवों और चौकियों तक अपनेपन का रोशनी पहुंचा देता है। अरुण एफएम, बहुत बहुत शुक्रिया, ये कहना है हमारे एक फौजी भाई का। दोस्तों, उनके जज्बे को सलाम करते हुए और रेडियो के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं उनको हमारा प्यार, हमारा उनके प्रति इज्जत, और उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य है कि उनके लिए दुआएं करते रहें। तो गीतों के माध्यम से हम कर रहे हैं उनके साथ दिल से दिल की बात। कहते हैं ना कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो कानों से देखना सिखाते हैं, केवल कानों से सुनना ही नहीं बल्कि दिल के कोने में पहुंच जाता है और हम महसूस कर सकते हैं अपनों को, अपनी माँ को, अपनी बहन को और अपने दोस्तों यारों को, अपनी गली को, गाँव को। चलिए अगला गीत उनको सलाम करते हुए कार्यक्रम गीतमाला में ये लीजिए, पेश है

तो दोस्तों आज की गीतमाला यही समाप्त होती है और आप सभी ने हमें अपना कीमती समय दिया, हमारे फौजी भाइयों को आदर सम्मान करने के लिए गीतों के माध्यम से, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली से प्रसारित होंगे हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार। रेडियो अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ बने रहिए, हम आपके साथ फिर से हाजिर होंगे ठीक 1:10 पर हिंदी क्लासिक म्यूजिक ऑफ 60s टू 80s के साथ।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और

पुडुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में ₹1 की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में ₹2 की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वेलकम बैक टू आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण एफएम। दोस्तों, आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार सुनने के बाद अब वक्त हो चला है आप सबको लिए चलने का सुनहरे दौर के गानों के कार्यक्रम क्लासिक हिंदी क्लासिक म्यूजिक फ्रॉम 60s टू 80s में। जी हाँ, हम आपके लिए इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं 1960s से लेकर 1980s के कुछ ऐसे नगमे जो हमारे दिलों में बसा हुआ है। भले ही वक्त उसे पुराना कहते हैं, लेकिन हमारा दिल जानता है कि वो हमारे लिए आज भी रेलेवेंट है। आज भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कल ही की बात है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVD.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: छोटे से ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं. सफर में हूँ आरजे नूरी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक, यानी कि हिंदी फिल्मी गाने 1960 से लेकर 1980 के उन सुनहरे दौर के गानों की यह सफर है. दोस्तों, सफर में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अगला गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गीत.

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

रिन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज के श्रोता दोस्तों, क्लासिक हिंदी म्यूजिक ऑफ 1960s टू 1980s का ये सुनहरा सफर इसी गीत के साथ ही समाप्त होता है। गीतों का सफर जारी रहेगा आकाशवाणी के रिन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। पुराने दौर के यानी कि सुनहरे दौर के गानों के सफर के बाद अब तय करेंगे नए गानों के धुन का एक नया सफर। तो बने रहिए हमारे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। करेंगे दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से।

0: कुछ कहा दीजिए ना हाफिज साहब
1: जी। नहीं मैं गाता नहीं।
0: सुना दीजिए ना जानू।
1: बुराना माने तो आप भी गाओ।
2: जब आए तेरी याद मुड़ के जाती।

आकाशवाणी के ईटानगर के FM बैंड 103.1 MHz पर आप आनंद उठा रहे हैं मेरे साथ यानी रेडियो साथी RJ नूरी के साथ हिंदी फिल्मी गाने। दोस्तों हिंदी फिल्मी गानों के तुरंत बाद ठीक 2 बजे का समय रहेगा आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित मिड डे न्यूज का और हिंदी में दोपहर समाचार का।

दोस्तों, कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आनंद लीजिए आकाशवाणी के RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि हमारा चैनल यानी कि RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ संगम है गीत संगीत देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें किस्से कहानियों और मोटिवेशनल कोट्स का। तो बने रही आकाशवाणी के RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में यानी कि 2:30 पर हम फिर से लौट कर आएंगे हिट्स ऑफ 90s के साथ। तो तब तक बने रहिए आकाशवाणी के RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: 1992 and first climbed Everest in 1994. He completed his 31st ascent on May 27 last year. Meanwhile, Lhagpa Sherpa, popularly known as the Mountain Queen, also extended her own record as the first Nepali woman to summit Everest by completing her 11th successful ascent of the peak. Within days of levying high customs duties on precious metals, the government has imposed import curbs on silver. The Directorate General of Foreign Trade in a notification said the import policy for silver, including silver plated with gold and platinum, are revised from free to restricted with immediate effect. Delhi Metro will run additional train trips to encourage the adoption of the metro over private vehicles. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, said the decision has been taken keeping in view the significant role of public transport in ensuring energy efficiency, economic viability and environmental sustainability in the prevailing circumstances. DMRC said that from tomorrow, 24 additional train trips will be operated every Monday with the deployment of 6 extra trains. The corporation added that the additional services will also be introduced on other days depending upon the requirement. The Railway Ministry has ordered a high-level inquiry into the fire incident involving 2 rear coaches of the Trivandrum New Delhi Rajdhani Express. At around 5:15 this morning, there was fire in 2 rear coaches, which include 1 guard coach and 1 AC 3-tier in Trivandrum New Delhi Rajdhani near Nagda of Kota Division. A major rail accident was averted in Ratlam, Madhya Pradesh this morning. Fire broke out in the B1 coach of the Thiruvananthapuram Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express, train number 12431. The incident took place between Luni Richa and Vikramgarh Alod stations in the Kota Division around 5:20 a.m. Ratlam Railway Division's Public Relations Officer Mukesh Kumar informed there has been no casualty in this incident. The cause of the fire is being investigated. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for the day. The Met Department has predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Maharashtra and northeastern states for the next 2 days. IMD has said Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha may experience heat wave conditions till tomorrow. Severe heat wave grips Madhya Pradesh. Temperature crosses 43 degrees in 15 cities. A report.
1: Madhya Pradesh is reeling under severe heat. Life has become difficult for people. Indore and Ujjain divisions are the worst affected. Yesterday, Khandwa and Nogaon recorded temperatures above 44 degrees Celsius. In 15 cities across the state, the mercury touched 43 degrees or above. According to the IMD, a strong heat wave is likely in Ratlam, Khargone and Khandwa today. Temperature may cross 44 degrees there. Heat wave conditions will also continue in Indore, Ujjain, Sagar, Rewa, Chhatrapur and more than a dozen other districts. The IMD says severe heat will continue across most part of the state till May 19. No rain alert has been issued anywhere today. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
0: On to sports now. In badminton, world number 4, Indian pair Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty went down 12-21, 23-25 to Indonesia's Leo Rolikanando and Daniel Martin in the men's doubles final of the Thailand Open in Bangkok today. In tennis, Ukraine's Alina Svitolina stunned world number 4 Coco Gauff of the US 6-4, 6-7, 6-2 to win the women's title at the Italian Open yesterday. In the men's section, Jannik Sinner will face Norway's Casper Ruud in the final today. The match will start at 8:30 p.m. Indian Standard Time. In IPL cricket, today Punjab Kings will take on Royal Challengers Bengaluru at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala. The match is scheduled to begin at 3:30 p.m. In another match, Delhi Capitals will face Rajasthan Royals at Arun Jaitley Stadium in Delhi. The match will begin at 7:30 p.m. World Hypertension Day is being observed today. The theme for this year is controlling hypertension together. Check your blood pressure regularly. Defeat the silent killer. The day is a part of Hypertension Awareness Month, aiming to raise global awareness about high blood pressure, promote prevention, detection and control. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to reach Gothenburg this afternoon on a two-day visit to Sweden will hold talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI and defence. India and Netherlands elevate bilateral relationship to strategic partnership. 17 agreements signed to strengthen collaboration in key areas. India condemns attacks on commercial shipping in Strait of Hormuz as unacceptable, says disrupting freedom of navigation cannot be justified. World Health Organization declares Ebola outbreak in Congo and Uganda a public health emergency of international concern. IMD issues heavy to very heavy rainfall alert at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa creates history by climbing Mount Everest for 32nd time, breaking his own record. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
3: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
4: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
3: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब यटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
5: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
2: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
6: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
2: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
7: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
8: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी ईटानगर का।
1: आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित मेदी न्यूज तथा दोपहर समाचार के बाद और देश दुनिया के ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के बाद फिर से चलने का वक्त हो गया है गीतों के सफर में। जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हैं मेरे साथ यानी अपनी रेडियो साथी आरजे नूरी के साथ और आप सब बने हुए हैं करने को दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। और वक्त है रोज की तरह 2:30 पर हिट्स ऑफ 90s के सफर में चलने का। दोस्तों आज की इस तेज भागती दुनिया में सुख सुविधाओं और आधुनिक साधनों की कोई कमी नहीं है। मोबाइल है, इंटरनेट है, बड़ी बड़ी स्क्रीन है, हर चीज बस एक क्लिक की दूरी पर मौजूद है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं दिल में वो सुकून, वो ठहराव, वो संतोष दिखाई नहीं देता। ये बात केवल पुराने दौर के लोगों का नहीं बल्कि आज के जमाने के यानी कि जेन जी का भी कहना है। दोस्तों आज लोग ऑनलाइन तो बहुत हैं लेकिन एक दूसरे के लिए वक्त कम होता जा रहा है। आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि आपका अपना साथी, आपके अपने घर वाले, अपने दोस्त आपके बगल में तो बैठे होते हैं लेकिन कहीं दूर मोबाइल पर किसी ऐसी दुनिया में होते हैं जहां उसका मन कहीं और उसका तन आपके पास। ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के लिए वक्त कम होता जा रहा है। हजारों गाने मोबाइल में मौजूद हैं, फिर भी दिल बार बार उन्हीं पुराने गीतों को सुनना चाहता है। और आज आपके और मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हिट्स ऑफ 90s के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं जिगर के इस खूबसूरत गीत यानी कि जिगर फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ अभिजीत और साधना सरगम की आवाजों में।

बिकॉज द हिट्स ऑफ 90s, यानी कि गाने जो 90s के हैं, उन गानों को हर वर्ग के लोग, जी हाँ हर वर्ग के लोग सुनना पसंद करते हैं, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो या किसी कंस्ट्रक्शन साइट में जाओ या किसी सिंगर जो गानों को प्रिपेयर करते हैं या रियाज करते हैं फिल्मी गाने, उसका उन लोगों का जो पहला पसंद है ना, या पहली पसंद यू कहो, तो 90s के ही गाने होते हैं। आपने कभी गौर किया होगा, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कभी ट्रैवल करते हो तो हमारे जो शॉफर रहते हैं यानी कि ड्राइवर होते हैं, उनके कलेक्शन में 90s के ही हिट्स के गाने प्लेलिस्ट में होंगे। हो सकता है कि लोगों को ऐसा लगता हो कि वो गाने ही नहीं है बल्कि वो एक संतोष प्रदान करते हैं, और वो केवल संगीत नहीं बल्कि एहसास होते हैं, हमारे एहसासों के बोल होते हैं, यादें हैं, यानी कि जिंदगी के वो खूबसूरत पलों के वो यादें हैं ना, वो जुड़े हुए हैं उन गानों के साथ। और बस हो सकता है कि इन्हीं सुकून भरे पलों की तलाश में ही वो सुनते होंगे। तो इसी सोच पर ही आधारित है हिट्स ऑफ 90s आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर रोज 2:30 से। तो हमने जो सजाई है आज की महफिल में हिट्स ऑफ 90s में और यादों के सफर में, अगला गीत है फिल्म दिल से।

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर अपने रेडियो साथ ही आरजे नूरी के साथ हिट्स ऑफ 90s। दोस्तों, आज का या यू कहो तो अरुण एफएम पर यह खास एपिसोड हिट्स ऑफ 90s, खास तौर पर हमारी नई पीढ़ी यानी कि जेन जी और आज के युवाओं के नाम करना चाहूंगी, क्योंकि शायद आपने 90s को देखा नहीं, लेकिन यकीन मानिए वो दौर सिर्फ एक समय नहीं था, एक एहसास है। आज की दुनिया बहुत तेज हो चुकी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, एआई है, हर चीज बस एक क्लिक की दूरी पर है दोस्तों। लेकिन 90s में चीजें इतनी आसान नहीं थी, फिर भी लोग ज्यादा मुस्कुराते थे, रिश्ते ज्यादा गहरे थे और दिलों में एक अलग ही सुकून था। आज अगर कोई दोस्त रिप्लाई देर से करे तो लोग परेशान हो जाते हैं, और 90s में घंटों दोस्तों के घर के बाहर आवाज लगाकर बुलाया जाता था, इंतजार किया जाता था कि कब मैदान में जाकर खेले, और चिट्ठियों का तो मत ही

पूछिए, आज अगर इंस्टेंट मैसेजेस के जमाने में अगर ऑनलाइन सीन अगर देखा जाए और आपके मैसेज का रिप्लाई ना आए तो आप रिश्ते तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन महीनों घंटों महीनों इंतजार किया करते थे एक चिट्ठी के रिप्लाई के लिए। इसलिए सहन शक्ति भी ज्यादा थी और खुशी भी ज्यादा थी, और ऐसे में भी रिश्ते बहुत गहरे थे। तो दोस्तों, आज फिल्मी कहानी के साथ साथ यानी फिल्मी गानों के साथ साथ हम यादें ताजा कर रहे हैं जमाने 90s के। चलिए इस और गीत के साथ यादें और ताजा करते हैं। हिट्स ऑफ 90s, अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो साथी आरजे नूरी के साथ।

दोस्तों कुछ ही पलों में यानी कि 2:58 पर आप सुन पाएंगे न्यूज हेडलाइंस और 3 बजे का समय रहेगा मिश्री श्रोताओं का कार्यक्रम का और 3:15 पर तारीख हमती श्रोताओं का कार्यक्रम। हम फिर लौटकर आएंगे 3:30 पर बॉलीवुड अपडेट्स के साथ, तो बने रहिए आकाशवाणी के रोना पे 103.1 MHz पर। आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s यादों का सफर आकाशवाणी के और एफएम 103.1 MHz पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से।
2: जी हाँ दोस्तों, गीत संगीत और ज्ञान एवं मनोरंजन से भरा चैनल अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी के एफएम बैंड पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपके रेडियो साथी आरजे नूरी। जी हाँ दोस्तों, 3:30 हो रहे हैं और इसी के साथ ही हम आपको लिए चलना चाहेंगे हमारे खास कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स। दोस्तों, मैं यूं ही फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे एक बेहद ही प्यारा सा एक मुझे ब्लॉग मिला द बॉलीवुड रेडियो। बहुत ही खास, कई सारे ऐसे एनेक्डोट्स और कई सारे ऐसे कहानियां थी जो भुलाए जा चुके हैं। उसी में ही मैंने 1973 की एक बेहद ही खूबसूरत सी कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैंने पढ़ी। लीजिए मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। 1973 में देवानंद की फिल्म बनारसी बाबू को रिलीज किया गया था। इस मूवी के संगीतकार कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी थी। इन दोनों ने देव साहब के लिए बनारस को जहन में रखते हुए एक गीत लिखा, लेकिन देव साहब ने इसे छिछुरा कहकर करने से मना कर दिया। करीब 5 साल तक देवानंद जी और कल्याण जी का वह गाना बंद बस्ते में पड़ा रहा। बाद में इस गाने को फिल्म डॉन में लिया गया और गाने के बोल थे खै के पान बनारस वाला, और यह गाना सुपरहिट हो गई और डॉन 2 में भी इसे यूज किया गया उदित नारायण की आवाज में। तो जैसे दोस्तों, ऐसे ही कई सारे किस्से कहानियां हैं, चलिए बॉलीवुड अपडेट में आप सबके साथ साझा करती हूँ। इस छोटी सी कहानी के साथ ही आपको नए उदित नारायण की आवाज में खै के पान बनारस वाला लीजिए सुनिए।
3: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है।
4: बताए दे।
3: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

0: तो दोस्तों बॉलीवुड अपडेट का ये आखिरी गीत है और आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में 3:40 पर वांछित श्रोताओं का समाचार सुन पाएंगे। समाचार के बाद हम फिर से लौट कर आएंगे 3:45 पर हिंदी फिल्मी गानों के साथ। तो बने रहिए आकाशवाणी के एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो साथी अर्जुन नूरी के साथ।
1: यकीन की हद के पास पास दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

यह आकाशवाणी का रेन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से आप सुन रहे थे वांछित श्रोताओं का समाचार। श्रोता दोस्तों, अगर आप जारी रखना चाहते हैं सुनना वांछित श्रोताओं का कार्यक्रम, तो आप ट्यून इन कर पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर के मीडियम वेव 444.6 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। चलिए आगे बढ़ते हैं आकाशवाणी के रेन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और सुनते हैं हिंदी फिल्मी गाने।

ऑनलाइन उठा रहे हैं हिंदी फिल्मी गाने आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब कुछ ही पलों में ठीक 4 बजे का समय रहेगा ईडू मिश्री श्रोताओं के समाचार का, तो तब तक आनंद लीजिए इस गीत का। हम फिर लौट कर आएंगे हिंदी फिल्मी गानों के साथ 4:05 पर।

श्रोताओं आप लुप्त उतार रहे थे वांछित श्रोताओं का कार्यक्रम को। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अब पेश है इदु मिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम।

दोस्तों ये भी मिश्री श्रोताओं के समाचार के बाद आइए चले चलते हैं फिर से एक और सफर यहाँ की हिंदी फिल्मी गानों के सफर में। यह आकाशवाणी का RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुनेंगे हिंदी फिल्मी गाने आरजे न्यूरी के साथ।

श्रोता दोस्तों, हमारी द्वितीय प्रसारण सभा का ये खूबसूरत सफर भी धीरे धीरे मुकाम तक पहुंच रहा है। उम्मीद है कि आज की बातें, मधुर गीत और ये साथ आपके दिलों में मुस्कान, सुकून और अपनापन छोड़ गए होंगे। और अब हमारी तीसरी प्रसारण सभा के इस सुनहरे कारवा को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडियो में पहुंच चुकी है आपकी आप सबकी आरजे डिंडो मंच, जो अपने खास अंदाज, ऊर्जा और बेहतरीन प्रस्तुतियों के साथ आपके शाम को और भी यादगार और खूबसूरत बनाने वाली है। तो कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। और मैं आरजे नूरी और मेरे साथ ही प्रसारण अधिकारी पी डोले तथा तकनीकी अभियंता तिमतिम आप सबसे इजाजत चाहते हैं। श्रोता दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में आप तांसा श्रोताओं का समाचार सुन पाएंगे और आप सबके साथ 4:25 पर दिंदो मंच शामिल होंगे गुड इवनिंग ईटानगर के साथ, तो बने रहिए। तो लीजिए मेरे साथ सफर में ये आखिरी गीत।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। मैं हूं आपकी आरशे बिंदुंग दिंदो मांच। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का कार्यक्रम तांगसा भाषा में समाचार। इससे पहले आप बने हुए थे आरजे नूरी के साथ। अब आपको साथ देने आई हूँ मैं, आपकी आरजे मांझ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे इस प्रसारण सभा को आप सभी तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद है अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय एवं तकनीकी अभियंता पीबी दियोरी। दोस्तों, वक्त है गुड इवनिंग ईटानगर का, और आज शाम की इस खूबसूरत घड़ी में हम लेकर आए हैं एक बहुत ही जरूरी और दिल से जुड़ा हुआ विषय। मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ मेंटल हेल्थ और कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स के बारे में हमारे इस खास गुड इवनिंग ईटानगर के कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे उन जज्बातों और मेंटल हेल्थ कंडीशन की जिनके बारे में लोग अक्सर चुप रहते हैं, जैसे एंगर इश्यूज, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी बीपीडी या बाइपोलर डिसऑर्डर और क्लिनिकल डिप्रेशन के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करना शुरू करें, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक बहुत ही प्यारा संगीत नुसरत फतेह अली खान की आवाज में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये जो हल्का हल्का सुरूर है।

0: दोस्तों, हमारी सोसाइटी में फिजिकल हेल्थ पर तो काफी बात होती है। बुखार है तो डॉक्टर के पास जाओ, फ्रैक्चर है तो ट्रीटमेंट ले लो। लेकिन जब बात दिमाग और इमोशंस की आती है तो लोग चुप हो जाते हैं, लोग डरते हैं। जज होने का डर, वीक समझे जाने का डर, या फिर ये डर कि कोई समझेगा ही नहीं। लेकिन सच ये है कि मेंटल हेल्थ स्ट्रगल बहुत कॉमन है, और शायद आपके आसपास भी कोई ऐसा हो जो साइलेंटली स्ट्रगल कर रहा हो। सकता है वो आपका दोस्त हो, पार्टनर हो, क्लासमेट हो, या शायद आप खुद। तो आज की शाम दोस्तों, बिना जजमेंट के, बिना लेबल्स के, हम समझने की कोशिश करेंगे कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल इश्यूज को, जैसे कि एंगर इश्यूज, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी बीपीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर और क्लिनिकल डिप्रेशन। एंगर इश्यू की जब हम बात करते हैं, गुस्सा तो एक नॉर्मल इमोशन है, हर इंसान को आता है। जब हमें डिसरिस्पेक्ट फील होता है, बिट्रेयल फील होता है, या इमोशनली हम हर्ट होते हैं, तो नेचुरली गुस्सा आता है। लेकिन कभी कभी ये गुस्सा कंट्रोल से बाहर चला जाता है। कुछ लोग छोटी बातों पर एक्सप्लोड कर देते हैं, बाद में रिग्रेट भी करते हैं, लेकिन उस वक्त इमोशंस इतने इंटेंस होते हैं कि कंट्रोल मुश्किल लगता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहुत बार गुस्से के नीचे एक्चुअली सैडनेस होती है, फियर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, इमोशनल पेन होता है। जो लोग बचपन से इमोशनली अनसेफ एनवायरनमेंट्स में बड़े होते हैं, या जिन्हें कभी हेल्दी इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं सिखाया गया, उनके लिए इमोशंस रेगुलेट करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन एंगर इश्यूज का मतलब ये नहीं कि कोई इंसान बुरा है। कभी कभी वो बस इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। थेरेपी, सेल्फ अवेयरनेस, ब्रीदिंग टेक्निक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और इमोशनल रेगुलेशन एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प कर सकती है, क्योंकि हीलिंग का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं, उन्हें हेल्दी तरीके से समझना और एक्सप्रेस करना है। अब बात करते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी बीपीडी की। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसे सोसाइटी और इंटरनेट दोनों बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। बीपीडी में इमोशंस बहुत इंटेंसली फील होते हैं, बहुत ज्यादा। एक छोटी सी रिजेक्शन भी किसी को इमोशनली तोड़ सकती है। एक लेट रिप्लाई अबैंडनमेंट जैसा फील हो सकता है। बीपीडी का एक मेजर सिम्टम होता है इंटेंस फियर ऑफ अबैंडनमेंट, यानी किसी अपने को खोने का डर। इसीलिए रिलेशनशिप्स कभी कभी अनस्टेबल हो जाती है। एक मोमेंट में किसी को बहुत डीपली आप प्यार कर सकते हैं, और अगले मोमेंट हर्ट या एंग्री फील कर सकते हैं। इमोशनल हाईज और लोज बहुत स्ट्रांग रहती है। कई लोग बीपीडी के साथ आइडेंटिटी कंफ्यूजन, इम्पल्सिव बिहेवियर, इमोशनल एम्प्टीनेस, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज और अनस्टेबल रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, पीपल विद बीपीडी आर नॉट टू मच। वो बस इमोशंस को बहुत डीपली फील करते हैं, और अक्सर उनके इमोशनल वूंड्स बहुत पुराने होते हैं। सही थेरेपी, इमोशनल सपोर्ट, बाउंड्रीज और सेल्फ वर्क के साथ हीलिंग पॉसिबल है। बहुत लोग बेटर इमोशनल बैलेंस अचीव कर पाते हैं। और लिसनर्स, मेरे प्यारे श्रोताओं, प्लीज इंटरनेट देखकर हर किसी को डायग्नोस मत कीजिए। मेंटल हेल्थ कंडीशंस कॉम्प्लेक्स होती है, और प्रॉपर प्रोफेशनल्स ही डायग्नोस कर सकते हैं। आजकल लोग कैजुअली बोल देते हैं, मेरा मूड चेंज हो गया, आई एम सो बाइपोलर। लेकिन एक्चुअल बाइपोलर डिसऑर्डर उससे काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन है। इसमें एक्सट्रीम इमोशनल फेजेस होते हैं, जैसे कि मैनिक फेजेस और डिप्रेसिव फेजेस। मैनिक फेजेस में इंसान बहुत एनर्जेटिक फील कर सकता है, कम सो सकता है, इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, ज्यादा पैसे स्पेंड करते हैं, या खुद को अनस्टॉपेबल फील कर सकता है। लेकिन डिप्रेसिव फेज में वही इंसान इमोशनली एग्जॉस्टेड, होपलेस, डिसकनेक्टेड और डीपली सैड फील कर सकता है। ये इमोशनल शिफ्ट्स स्टडीज, वर्क, रिलेशनशिप्स और डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। बाइपोलर डिसऑर्डर कोई पर्सनालिटी फ्लो नहीं, ये एक मेडिकल हेल्थ कंडीशन है और ट्रीटमेंट, थेरेपी, मेडिकेशन रूटीन और सपोर्ट सिस्टम के साथ लोग स्टेबल और सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स किसी को वीक नहीं बनाती। हर इंसान अपनी लाइफ में किसी न किसी इमोशनल बैटल से गुजरता है, तो अगली बार जब कोई टू इमोशनल लगे या एंग्री या डिस्टेंट, तो सिर्फ उनका बिहेवियर मत देखिए, शायद उनके अंदर एक कहानी चल रही हो जिसे वो खुद भी समझने की कोशिश कर रहा है। तो बी काइंड, बी इमोशनली अवेयर और सबसे जरूरी, हेल्प मांगने से कभी मत डरिए। आप अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं है। दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे मांश। आशा करती हूँ कि आज के इस बातचीत के द्वारा आपको कुछ फायदा हुआ हो, आपने कुछ सोचा हो, शायद मैंने होपफुली आपकी कुछ इमोशंस को ट्रिगर किया हो, जिससे आप इंटरनलाइज करके खुद को जान सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं और साथ ही आपके आसपास के लोगों को भी और बेहतर जान सकते हैं। हमारे आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz में हम हमेशा ऐसी गहरी और इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, साथ ही हम आपको एंटरटेन भी करते हैं कुछ बेहतरीन गीतों के साथ। गुड इवनिंग ईटानगर में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसके बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार यानी इंग्लिश न्यूज, और उसके बाद आप सुनेंगे नुक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम नुक्ते भाषा में समाचार। हम फिर मुलाकात करेंगे इन सब के बाद हमारे खास कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में। तो बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम बात करते हैं दोस्तों दिल से दिल तक।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोटेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नेदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोटेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नेदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है। नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नेदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलदमरों मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट कोविड-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। ये शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है और अक्सर जानलेवा बन सकता है। इबोला के अधिकांश मामले कांगो से सामने आए हैं। युगांडा में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। सरकार ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में से कोई मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। सचिव ने बताया कि सीबीएसई ने इस वर्ष ऐसी प्रणाली लागू की है जिससे मूल्यांकन में अधिक पारदर्शी और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। सचिव ने कहा कि सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। आज सुबह करीब 5:15 बजे कोटा रेल मंडल के नागदा के पास त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में आग लग गई, जिनमें एक गार्ड डिब्बा और एक एसी-3 टियर डिब्बा शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। दोनों डिब्बों को तुरंत अलग किया गया और घटनाओं में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। रेलवे ने डिब्बों में अग्निशमन प्रणालियों की जांच का काम शुरू कर दिया है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपने साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। कलिनागो डोमिनिका के निवासी हैं जो कैरिबियाई क्षेत्र के शुरुआती लोगों के वंशज माने जाते हैं जो अब बहुत कम संख्या में बचे हैं। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यांत्रिक मेधा और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंस टेक पार्क के पहले चरण और ग्रैमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। श्री शाह दो दिन के गुजरात दौरे पर है। वे आज गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के नवाचार एवं इन्क्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन करेंगे। वे गांधीनगर नगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेर्पा है। नेपाल के कोशी प्रांत के सोलुखुम्बु जिले में जन्मे कामी रीता ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इसी बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लहपा शेर्पा ने वे एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को रजत से संतोष करना पड़ा है। फाइनल में इस जोड़ी को इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नोडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी ने 12-21, 23-25 से हराया। महिला डबल्स में चीन के बाओ लीजिंग और काओ जिहान ने फाइनल में जापान की रिन इवानागा और की नाकाशिकी को 19-21, 21-16, 21-19 से हरा दिया। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोगों को बढ़ावा देना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।
2: This is Akashvani, the news read by Indu Chuku. Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit.

0: सिटापम्मा सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 ऑर्डिनेंस पर जो अमेंड होने का अधिकार अमेंडमेंट डी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नुकमा एपेक्स कोर्ट ना ठीक हो रोक्रम वाइस जजेस लाडंग ता जोंगा में जो चोटो कोई का गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कैटी परनाइक का मजा ईटानगर व लोकभवन को लोकभवन व स्टाफ मेंबर श्रीमती मिनती दकुया नाम गवर्नर साइटेशन दम को कैश अवार्ड पको वाजा अधिक तेमा साइटेशन लंगुन रोकनी हाजत कैश प्राइस पर लोकभवन कॉम्प्लेक्स का खोतो नाडा मेंवा तेमा होमवर्क एक्शन पर कब था चोको वाजा अधिक मिनती मा मई जावने सप्ताह 2026 रंपा रंखा वन मी खाट है बाजी को पी सेक्टर नंग वन थोंग नंग खाम होंगला मा खे वाजा नाले लंबी मा पावर डिपार्टमेंट नंग ठोको दी को वन लाइन पर काटी लामा खोतो नाडा मेंवा तंग वाजा गा मजा जो ठोको एगा अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी कमीशन है मठजा कमीशन ऑफिस का चैंपियन मेंबर ऑफ एपीपीईआरसी डॉक्टर जोराम मनिया नाम फेयरवेल पको वाजा गाले डॉक्टर जोराम मनिया बा न्यू दिल्ली नाम नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर रंग जो अपॉइंट डगेगा अधिक फेयरवेल प्रोग्राम को चेयरपर्सन सिरिंग नक्संग डोंगा डोंगा स्टाफ मेंबर से डोंगा वाजा अधिक प्रोग्राम को जब तक चेयरपर्सन मा डॉक्टर जोराम मा कमीशन ना डंग पॉइंट का कंट्रीब्यूशन ना डेडिकेटेड सर्विस कोटा है ना चोटो को वाजा स्टेट मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पीयूरा वांग है मंजा पाके के संग सजोसा ना रबर प्रोड्यूसर सोसाइटी ऑफिस कम ट्रेनिंग हॉल पर लांग को वाजा अरेगो सजोसा ना रबर के पोटेंशियल पर तोंगा ला प्रॉपर ट्रेनिंग ला गाइडेंस दमंग लोकल है रंग असन वो इन वंगरा जोंगा मा मेन चोटो को वाजा अरेगो 2012 रंग पा को सजोसा ना रबर के बंगवन तेल प्रोग्रेसिव फार्मर अवार्डी विजनरी पायोनियर लीड निसम नाबम नंग ओन बानहो रंग अते स्टैच्यू पमे लुसे को वाजा पास सिगत 100 मिल केवा 2 माइल इंडस्ट्रियल एस्टेट को मजा टुलंग प्योर एडिबल ऑयल फैक्ट्री पलांग वाजा अधिको फैक्ट्री पर कमर्शियल इंडस्ट्री मिनिस्टर न्यातो दुकम्मा रोग्रा मनिसत पास सिगत इस एमएलए तापी दारंग रोग्रा मनिंगे पास सिगत वेस एमएलए निनों मेरिंग ले रोग्रा मने कोई मेरे बो एमएलए ओके टाइम है मिखे को लांग को वाजा अधिक दुकम मामा मामा मत मंग पताजुन रंग परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट डंग पचा लम्बे का नाम चुटो को वाजा अधिक मिनिस्टर को मा डिस्ट्रिक्ट खंड को फैक्ट्री लांग था मोहंतो पंगिन नंग या रंग रो वाजा नाम में चुटो को जाओ रहेगा वनिकुलो अंडर 16 दलाला डीएफ चाहे स्टेट लेवल हंपन दादा मेमोरियल फुटबॉल ले वॉलीबॉल ट्रॉफी टूर्नामेंट पर वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट वा आलो स्टेडियम को बंगलों बाजा अधिक डूम टे कोचेस टेक्निकल ऑफिशियल्स ले रुकनी वनसर डिस्ट्रिक्ट वा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर से नुकमा हज ठचा बंगा है मा पाचा कबेगा अधिक अबंग लुसे प्रोग्राम को मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स केंटो जिनी एमएलए टॉपिन एटेल है लेट हवलदर हंपन दादा दिहिया चासन लोवंग दादा लहान हे दाव पाचो गाम जो चुज ठुगेगा रीजन व अहन हन सेंटर से नाम जुंजा वन टेप मा छि बनी तारे टको 2027 रिक्रूटिंग रंगपा को रंग अग्निवीर रिक्रूटमेंट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पर एडंग आ जाओ अधिक अरुणाचल प्रदेश व सक्सेसफुल रजिस्टर वन टेन ले एलिजिबल कैंडिडेट है मा होम वाइक को एका टंको एडमिट कार्ड पर www.joinindianarmy.msc.in को डाउनलोड ताखो नन जाओ नाले एग्जाम सब थे सेंटर को और एडमिट के सब देखो बांग न्यूक ठुक मिन जाओ नाम जाओ जो ठुक हुए का मेट्रोलॉजिकल सेंटर इटाना रहे मा वेस्ट सियांग लेपा राधा ले लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट रंग ऑरेंज अलर्ट पर जालू सेट को एका अधिक और डिस्ट्रिक्ट है ना रंग मुंग रंग पा डम को रंग डम मुंग ए पा डा नाले ले को अरुणाचल प्रदेश को छिवरम डिस्ट्रिक्ट से रंग येलो अलर्ट पर मैंगलो से को जा रहेगा तो जाना मत देखो बड़ा तो को जा ला थोन मोटा
1: अरे खबर से प्रोग्राम को ताजा मा बोले लमनु छावा

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नौक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम नौक्ते भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। गुड इवनिंग ईटानगर।

आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव और मैं हूं आपकी आरजे मांझ। उम्मीद करती हूं आपका दिन ठीक रहा होगा और अगर आप इस वक्त ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो टेंशन मत लीजिए, अगले कुछ मिनट हम आपके साथ हैं। चलिए हमारे इवनिंग ड्राइव के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ। हम सुनेंगे केके की एल्बम पल से एक बहुत ही प्यारा गीत, दोस्तों के नाम, गीत का नाम है यारों।

हैवी रेन्स, कहीं लॉन्ग ट्रैफिक लाइंस और कहीं लोग चाय के साथ पकोड़े एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस रोमांटिक मौसम के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, सेफ ड्राइविंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, बारिश में ड्राइविंग सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल करना नहीं, बारिश में ड्राइविंग का मतलब होता है पेशेंस, क्योंकि गीली सड़कें अनप्रेडिक्टेबल होती है। कब ब्रेक स्लिप हो जाए, कब टायर स्किड कर जाए, कब सामने से कोई बाइकर सडनली बैलेंस लूज कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज स्पीड थोड़ी कम रखिए। अक्सर हम सोचते हैं बस घर ही तो पहुंचना है जितना जल्दी हो सके, लेकिन सच ये है घर थोड़ा लेट पहुंच जाना बेटर है कंपेयर्ड टू टेकिंग अननेसेसरी रिस्क्स। और एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, फॉलोइंग डिस्टेंस मेंटेन करना। ड्राई रोड्स पर जो डिस्टेंस काफी होता है बारिश में वो इनफ नहीं, गीली सड़कों पर ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर सामने वाली गाड़ी सडन ब्रेक लगाए तो रिएक्शन टाइम मिलना बहुत जरूरी है। अब चलिए बात करते हैं इंडिकेटर्स और हेडलाइट्स की। दोस्तों, बारिश में विजिबिलिटी नेचुरली लो होती है। कई बार आपको लगता है कि सामने वाली गाड़ी आपको देख लेगी, लेकिन शायद वो आपको क्लियरली देख ही नहीं पा रही हो। इसीलिए हेडलाइट्स ऑन रखिए, हाई बीम अननेसेसरी यूज मत करिए, स्पेशली सिटी ट्रैफिक में जैसे कि हमारा ईटानगर। हाई बीम सामने वाले ड्राइवर को टेम्पररीली ब्लाइंड कर सकता है। इंडिकेटर्स का प्रॉपर यूज कीजिए, सडन टर्न्स और लेन चेंजेस अवॉइड करिए। बिलीव मी, रोड पर प्रेडिक्टेबिलिटी ही सेफ्टी है। और हाँ, एक छोटी सी हैबिट जो हम सबको इम्प्रूव करनी चाहिए, अननेसेसरी हॉर्न बजाना। बारिश में ऑलरेडी लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, ट्रैफिक हैवी रहता है, हर दूसरा ड्राइवर जल्दी में होता है, लेकिन कंटिन्यूस हॉर्न किसी ट्रैफिक को मैजिकली डिसअपीयर नहीं करेगा। पेशेंस रखिए, कामली ड्राइव कीजिए, और यही एक्चुअल स्किल है। आगे हम और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहती हूँ एक गीत। चलिए सुनते हैं मिनमिनी की आवाज में फिल्म रोजा से छोटी सी आशा।

दोस्तों चलिए अब बात करते हैं पेडेस्ट्रियंस के बारे में। ईटानगर की सड़कों पर बारिश के टाइम पडल्स तो एवरीवेयर मिलते हैं, यह आपको भी पता है और मुझे भी। और हम में से कई लोग अननोइंगली फास्ट गाड़ी चला देते हैं और पूरा पानी फुटपाथ पर चल रहे लोगों पर चल जाता है। सोचिए जरा, कोई ऑफिस से घर जा रहा हो, कोई स्टूडेंट कोचिंग से निकल रहा हो, कोई एल्डरली पर्सन रोड क्रॉस कर रहा हो और एक स्पीडिंग कार उन्हें पूरा भिगा दे। शायद हमारे लिए वो एक सेकंड हो, लेकिन उनका पूरा मूड और पूरा दिन खराब हो सकता है। तो जब भी पानी भरी रोड दिखे, स्पीड स्लो कर दीजिए। रोड शेयर करना सिर्फ व्हीकल्स के साथ नहीं, लोगों के साथ भी होता है। तो जब भी पानी भरी रोड दिखे, स्पीड स्लो कर दीजिए। और बाइकर्स के लिए भी थोड़ा कंसिडरेट बनिए। रेनी सीजन में टू व्हीलर्स को सबसे ज्यादा चैलेंज होता है। स्लिपरी रोड्स, पोर्ट होल्स, लो विजिबिलिटी, उनके लिए बैलेंस मेंटेन करना आसान नहीं होता। इसीलिए उनके बहुत क्लोज ड्राइव मत करिए, सडन ओवरटेक्स अवॉइड कीजिए, सेफ स्पेस दीजिए। वैसे पोर्ट होल्स की बात निकली है तो दोस्तों प्लीज वाटर लॉग्ड एरियाज में एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए। बारिश में रोड का एक्चुअल सरफेस दिखता नहीं, छोटा सा पडल कब डीप पोर्ट होल निकले कोई गारंटी नहीं। इसीलिए अनफेमिलियर रोड्स पर स्पेशली स्लो ड्राइव करिए और प्लीज मोबाइल फोन

यूज करते हुए ड्राइव मत कीजिए। एक नोटिफिकेशन, एक क्विक रिप्लाई, एक सेकंड का डिस्ट्रैक्शन और उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत बड़ा हो सकता है। अगर कॉल इम्पोर्टेंट है तो गाड़ी साइड में सेफली पार्क करके बात कीजिए। सीट बेल्ट और हेलमेट पर भी एक रिमाइंडर देना जरूरी है। फ्रंट सीट हो या बैक सीट, सीट बेल्ट जरूर पहनिए। हेलमेट सिर्फ पुलिस चेकिंग के लिए नहीं, हेलमेट प्रॉपरली स्ट्रैप करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। आपकी सेफ्टी ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप सेफ नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। जीना जरूरी है, इसीलिए दोस्तों सीट बेल्ट और हेलमेट हमेशा हमेशा पहनिए। चलिए आगे हम और भी बात करेंगे, लेकिन अब वक्त है आपको एक प्यारा सा गीत सुनाने का। अगला जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है फिल्म मोहब्बते से चलते चलते।

दोस्तों, एक और बात जो शायद कम लोग डिस्कस करते हैं, टायर्ड ड्राइविंग। ऑफिस के बाद इवनिंग ट्रैफिक में हम मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं। बारिश और ट्रैफिक, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है। ऐसे में एग्रेशन नेचुरली आ जाता है। लेकिन याद रखिए, रैश ड्राइविंग से आप सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी रिस्क में डालते हैं। कभी-कभी किसी को लेन देना, किसी पेडेस्ट्रियन को पीसफुली क्रॉस करने देना, किसी एम्बुलेंस को जल्दी साइड देना, ये छोटी चीजें ही सिटी को बेहतर बनाती है। और एम्बुलेंस की बात आई है तो प्लीज इमरजेंसी व्हीकल्स को इमीडिएटली दे दीजिए। सिर्फ रूल नहीं, ह्यूमिलिटी ह्यूमैनिटी भी है। दोस्तों, ट्रैफिक रूल्स कोई पनिशमेंट सिस्टम नहीं है। रेड लाइट पर रुकना, जेब्रा क्रॉसिंग रेस्पेक्ट करना, नो पार्किंग फॉलो करना, ये सब एक ऑर्गेनाइज्ड और सेफ सिटी बनाने के लिए होता है। और रेनी सीजन में तो स्पेशली डिसिप्लिन और पेशेंस और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आज जब आप घर लौट रहे हैं, थोड़ा म्यूजिक एंजॉय करिए, कभी बारिश एंजॉय कीजिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबली। किसी को स्प्लैश मत करिए, अननेसेसरी रेस मत करिए, और किसी की मिस्टेक पर

रोदरेज मत दिखाइए। कभी कभी एक स्माइल, एक थैंक यू जेस्चर, एक स्मॉल कर्टेसी ऑन द रोड किसी का स्ट्रेसफुल डे बेटर बना देता है, क्योंकि रोड पर हर गाड़ी के अंदर एक कहानी चल रही होती है। कोई घर जल्दी पहुंचना चाहता है, कोई फैमिली से मिलने जा रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई काम से थक कर बस सेफली घर लौटना चाहता है। सो बी काइंड, बी अलर्ट, बी रेस्पॉन्सिबल। मैं हूं आपकी आरजे मंज और आप सुन रहे हैं इवनिंग ड्राइव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम शाम की महफिल का। लेकिन उससे पहले एक लाइन जरूर याद रखिए, ड्राइव ऐसे करिए जैसे सामने वाला भी इम्पोर्टेंट हो। स्टे सेफ ईटानगर, और बारिश में जरा संभल के। चलिए अब शुरू करते हैं शाम की महफिल का ये कार्यक्रम। अगले कुछ वक्त तक हम साथ मिलकर इस खूबसूरत शाम को और भी हसीन बनाएंगे। दिन भर की भागदौड़ के बाद फाइनली वो वक्त आ गया है जब शहर की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, ऑफिस के लाइट्स धीरे धीरे बंद हो रही है, चाय की दुकानों से उठी हुई चाय की खुशबू हवा में घुल रही है और आसमान में शाम अपने रंग भर रही है। ईटानगर की शाम का अपना ही एक अंदाज होता है ना दोस्तों। कहीं गाड़ी धीरे धीरे गुजरती हुई, कहीं बारिश के बाद सड़कों पर चमकती लाइट्स, कहीं टैक्सीज की खिड़की से आती हल्की हवा, और कहीं किसी के हेडफोन्स में चल रहा एक पुराना बॉलीवुड गाना। और इसी मूड को और भी स्पेशल बनाने के लिए हम लेकर आए हैं सोलफुल और सूथिंग बॉलीवुड मेलोडीज, जो सिर्फ गाने नहीं एहसास है। आज के इस महफिल में होंगे वो नगमे जो दिल को सुकून देते हैं, वो आवाजें जो शाम को और भी सॉफ्ट बना देती है, वो लिरिक्स जो कभी यादों की तरह लगते हैं तो कभी किसी अधूरी बातों की तरह। तो अगर आप ट्रैफिक में हैं, रिलैक्स कीजिए। अगर आप घर की बैल्कनी में चाय लेकर बैठे हैं, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। और अगर आप बस खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं तो ये शाम आपके नाम। कभी कभी लाइफ को लाउड नहीं, बस हल्का सा म्यूजिक चाहिए होता है, एक ऐसी आवाज जो दिल कहे, जो दिल को कहे सब ठीक हो जाएगा। और बॉलीवुड के पास ऐसे गाने की कभी कमी नहीं रही। किशोरदा की वॉर्म्थ, जगजीत सिंह साहब की गहराई, अरिजीत की सॉफ्टनेस, श्रेया की मिठास और उन मेलोडीज का जादू जो वक्त के साथ और खूबसूरत लगने लगता है। आज हम सिर्फ गाने नहीं सुनाएंगे, हम यादें महसूस कराएंगे। वो पुरानी बारिश, वो पहली चाय, वो किसी का इंतजार, वो एक खामोश ड्राइव, सब कुछ। तो चलिए दोस्तों, डिम लाइट्स, कूल ब्रिज, हल्का सा नॉस्टैल्जिया और परफेक्ट बॉलीवुड मेलोडीज के साथ शुरू करते हैं आज की शाम की महफिल। मैं हूँ आपकी आरजे मंज और ये शाम अब और भी खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि हम सुनने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा गीत। हम सुनाएंगे आपको सुनिधि चौहान की आवाज में मनवा।

दोस्तों, शाम धीरे धीरे और भी हसीन होती जा रही है और कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो बस प्ले होते ही मूड को इंस्टेंटली सॉफ्ट और ड्रीमी बना देती है। अब जो गाना आ रही है उसमें है फ्रेंडशिप की वॉर्म्थ, थोड़ा सा रोमांस और एक ब्यूटीफुल फील गुड वाइब, कभी लॉन्ग ड्राइव पर, कभी रेनी इवनिंग्स में और कभी बस खिड़की के पास बैठकर ये गाना हर बार दिल को हल्का सा स्माइल दे जाता है। फ्रॉम द फिल्म दोस्ताना, हियर इज द ब्यूटीफुल जाने क्यों, संग बाय विशाल ददलानी एंड सुनिधि चौहान। तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और इस खूबसूरत मेलोडी को फील कीजिए। जाने क्यों दिल चाहता है, तू है तो आई बी ऑल राइट। ओनली ऑन शाम की महफिल एट आकाशवाणी ईटानगर, अरुण FM 103.1 MHz।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों आप सुन रहे हैं शाम की महफिल, जहां शाम सिर्फ गुजरती रही महसूस होती है। और अब वक्त है एक ऐसे गाने का जो बिल्कुल हल्की ठंडी हवा की तरह दिल को टच करता है। सॉफ्ट म्यूजिक, ब्यूटीफुल लिरिक्स और वो इनोसेंट सी फीलिंग ऑफ फॉलिंग इन लव। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हमारे लाइफ में बिल्कुल तितली की तरह आती है, क्वाइटली, सॉफ्टली, और फिर पूरी दुनिया थोड़ी ज्यादा कलरफुल लगने लगती है। फ्रॉम द फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस, हियर कम्स द मैजिकल तितली, संग बाय ब्यूटीफुल चिन्मय श्रीपदा एंड गोपी सुंदर। तो इस सुकून भरी शाम में थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी मुस्कुराहट और बहुत सारे मेलोडी के साथ एंजॉय कीजिए तितली ओनली ऑन शाम की महफिल।

दोस्तों, शाम और भी गहरी होती जा रही है और जैसे जैसे रात करीब आती है वैसे वैसे दिल थोड़ा और इमोशनल, थोड़ा और नॉस्टैल्जिक हो जाता है। अब जो गाना आ रहा है उसमें एक अजीब सा सुकून है, एक वार्म्थ है, जैसे किसी अपने की दुआ हो, कभी प्यार में, कभी दूरियों में और कभी सिर्फ खामोश लम्हों में। ये गाना दिल को बहुत जेंटली टच करता है। फ्रॉम द फिल्म बिल्लू, हियर्स अ सोलफुल खुदाया खैर, संग बाय मनाली ठाकुर, सोहम चक्रवर्ती एंड कंपोज्ड बाय प्रीतम दा। तो इस खूबसूरत शाम में दिल को थोड़ा महसूस करने दीजिए और एंजॉय कीजिए। खुदाया खैर। यू आर लिसनिंग टू शाम की महफिल ऑन आकाशवाणी ईटानगर्स अरुण FM 103.1 MHz, जहां हम बात करते हैं दोस्तों दिल से दिल तक।

के दिन की थकान थोड़ी कम की होगी और दिल को थोड़ा सा सुकून दिया होगा। कभी बारिश की हल्की सी आवाज, कभी चाय की गर्माहट और कभी बॉलीवुड मेलोडीज, बस इतना ही काफी होता है एक अच्छी शाम के लिए। मैं हूँ आपकी आरजे मंज। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की ओर। और अगले प्रोग्राम में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नॉन स्टॉप म्यूजिकल रिले, और इस बार पूरी महफिल सजेगी एक स्टाइलिश, इमोशनल और ड्रीमी साउंड ट्रैक के नाम। गेट रेडी फॉर द अनफॉरगेटेबल सॉन्ग्स ऑफ काइट्स। लव, लॉन्गिंग, पैशन और मेलोडीज का परफेक्ट ब्लेंड, बैक टू बैक बिना रुकावट। गीत जैसे दिल क्यों ये मेरा, जिंदगी दो पल की, तुम भी हो वही, और बहुत सारे सोलफुल ट्रैक्स के साथ ये रात अब और भी म्यूजिकल होने वाली है। तो कहीं मत जाइए, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और तैयार हो जाइए काइट्स का नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले के लिए। सिर्फ यही आपके फेवरेट आकाशवाणी ईटानगर के अरन FM 103.1 MHz पर, जहां दोस्तों हम बात करते हैं दिल से दिल तक।

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे एक नॉन स्टॉप म्यूजिकल रिले फिल्म काइट के ऊपर। हमने सुना कुछ बेहतरीन गीत। अब वक्त है आदि श्रोताओं का कार्यक्रम आदि भाषा में समाचार के लिए। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का कार्यक्रम आदि भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आज के कलाकार में। और आज के स्पेशल सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट के बारे में। इस सेगमेंट आज के कलाकार में हम सिर्फ गाने नहीं सुनाते, बल्कि उन आवाजों के पीछे की कहानी भी महसूस करते हैं। आज की हमारी फीचर्ड आर्टिस्ट है एक ऐसे सिंगर जिनकी आवाज में सॉफ्टनेस भी है, इनोसेंस भी, और एक अलग ही इमोशनल डेप्थ भी। जब वो रोमांटिक गाना गाती है तो दिल में मेल्ट हो जाता है, और जब सोलफुल मेलेडी गाती है तो हर लफ्ज सीधा दिल तक पहुंचता है। जी हाँ दोस्तों, आज की महफिल सज रही है टैलेंटेड और ग्रेसफुल मोनाली ठाकुर के नाम। 3 नवंबर 1985 को कोलकाता में एक बंगाली म्यूजिकल फैमिली में जन्मी मोनाली का म्यूजिक से रिश्ता बचपन से ही था। उनके फादर शक्ति ठाकुर बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के वेल नोन सिंगर और एक्टर थे, और उनकी सिस्टर मेहुली ठाकुर भी प्लेबैक सिंगर है। म्यूजिक लिटरली उनके घर की हवा में था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, मोनाली सिर्फ सिंगर ही नहीं थी, वो ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर भी है। हिप हॉप और सालसा भी सीखा है उन्होंने। शायद इसीलिए उनकी परफॉर्मेंसेस में एक नेचुरल रिदम और फ्लो महसूस होता है। चलिए आगे हम और बात करेंगे मोनाली ठाकुर के बारे में। इससे पहले आपको सुनाते हैं मोनाली ठाकुर की वन ऑफ द मोस्ट हिट, मोस्ट रीसेंट हिट, मेरी फेवरेट नेटफ्लिक्स फिल्म महाराज से, हाँ के हाँ।

0: दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द मोस्ट रोमांटिक, द मोस्ट इमोशनल, द मोस्ट सोलफुल मेलोडियस मोनाली ठाकुर के बारे में। हमने बात की थी कि मोनाली सिर्फ सिंगर ही नहीं, वो एक ट्रेंड भरतनाट्यम, हिप हॉप और सैलसा डांसर भी है। कोलकाता से के स्कूल और कॉलेज कंपटीशन से लेकर लोकल स्टेज शोज तक मोनाली ने बहुत छोटी एज से परफॉर्म करना शुरू किया था और सिर्फ 14 साल की एज में ही उन्हें प्लेबैक सिंगिंग के लिए अवार्ड भी मिल गया था। लेकिन नेशनल लेवल पर लोगों ने उन्हें पहली बार नोटिस किया सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में। वो शो तो नहीं जीत पाई, लेकिन उनकी आवाज लोगों के दिल में रह गई। और दोस्तों, यही होती है असली पहचान। रियलिटी शोज के बाद स्ट्रगल भी हुआ, इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन फिर आया वो गाना जिसने मोनाली ठाकुर को एकदम स्पॉटलाइट में ढाल दिया था, फिल्म रेस का सुपरहिट ट्रैक जरा जरा टच में। अभी हमने सुना था मोनाली की आवाज में हाँ के हाँ, और उसकी उनकी उस मेलोडियस वॉइस के बाद जरा ये मानना तकलीफ हो जाता है कि ऐसा सेंशुअल गाना, जरा जरा टच मी जैसा बहुत ही हॉट सेंशुअल गीत वो गा सकती है। लेकिन उन्होंने वो भी गाकर दिखाया। कैटरीना कैफ को उसने आवाज दी इस फिल्म में, इस गाने में। तो चलिए इसी बात पे सुनते हैं जरा जरा टच मी।
1: Subscribe now. Never miss an update from Tips Official.

दोस्तों उस वक्त ये गाना लिटरली हर जगह बज रहा था, क्लब्स, रेडियोस, पार्टीज, प्लेलिस्ट, एवरीवेयर। और मुनारिट की आवाज इंस्टेंटली यूथ की फेवरेट बन गई। उसके बाद ख्वाब देखे, खुदाया खैर, तू मोहब्बत है, अग्गा बाई जैसे ट्रैक्स ने उनकी वर्सिटैलिटी को प्रूव कर दी। लेकिन अगर उनके करियर का एक ट्रूली मैजिकल टर्निंग पॉइंट माना जाए तो वो था फिल्म लुटेरा का टाइमलेस मेलोडी सवार लू। क्या खूबसूरत गाना था वो, 1950s की ओल्ड वर्ल्ड चार्म, सॉफ्ट ऑर्केस्ट्रेशन और मोनाली की शुगरी स्वीट वॉइस। उस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर भी मिला। और फिर आया एक और मास्टरपीस, फिल्म दम लगा के हाइशा का सोलफुल क्लासिक मोह मोह के धागे। दोस्तों ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये एक इमोशन था। तो चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं उनका ये बहुत ही क्लासिकल सोलफुल हिट, मोह मोह के धागे, फिल्म दम लगा के हाइशा से।

दोस्तों, ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये एक इमोशन था। प्योर इंडियन मेलोडी, सिंप्लिसिटी और हर्ट फेल्ट सिंगिंग का इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बहुत कम सुनने को मिलता है। इस गाने ने मोनाली को नेशनल फिल्म अवार्ड दिलाया फॉर द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, एंड ऑनेस्टली बिल्कुल डिजर्व्ड। मोनाली की सिंगिंग की सबसे खास बात यह है कि वो ओवर सिंग नहीं करती, उनकी आवाज में

नाइट प्लेलिस्ट का इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपने हमारे आज के कलाकार मोनाली ठाकुर के साथ एंजॉय किया। चलिए एक और बार, आखिरी बार एंजॉय करेंगे मोनाली ठाकुर के ब्यूटीफुल, सोलफुल और अनफॉरगेटेबल सॉन्ग। चलिए सुनते हैं तेरे जैसा तू है। मैं आपको बता दूं कि इस गीत के तुरंत बाद आप सुनेंगे निशी श्रोताओं का कार्यक्रम निशी भाषा में समाचार। तो बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का कार्यक्रम निशी भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और अब वक्त है दोस्तों हमारे खास वुमेन एंड फैमिली प्रोग्राम का। आज आप सुनेंगे एक इंटरव्यू डॉक्टर सलीम अहमद के साथ, बात करेंगे सर्विकल कैंसर के बारे में। तो हमारे साथ बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ, जहां हम बात करते हैं दोस्तों दिल से दिल तक।
1: नमस्कार, आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के सभी सुनने वालों का महिला जगत कार्यक्रम में बेहद स्वागत है। आज हम आपके लिए जिस विषय पर जानकारी लेकर आए हैं वो है सर्वाइकल कैंसर, और इससे जुड़ी आवश्यक जानकारियां आज हम आपको बताने वाले हैं। और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम अहमद जी। तो चलिए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपका बेहद स्वागत अहमद सर आज के महिला जगत कार्यक्रम में।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: आज हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानने वाले हैं, तो सबसे पहले बताइए कि ये क्या है सर्वाइकल कैंसर।
2: सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है फीमेल का जी। जो हम लोग का एक्चुअली बहुत दुर्भाग्य है, इट इज वेरी बैड लक कि हम लोग का जो देश है डेवलपिंग कंट्री, इसमें फीमेल पॉपुलेशन में नंबर वन या नंबर टू कॉज ऑफ डेथ, एंड सर्वाइकल कैंसर बिकम्स द फर्स्ट कैंसर वेरी कॉमन इन। सो इट्स ए वेरी बिग प्रॉब्लम, स्पेशली हम लोग का इंडिया जैसा देश में बहुत बिग प्रॉब्लम है। तो इसमें यूजुअली देखा गया है कि हम लोग का सर्वाइकल कैंसर का डेथ रेट भी इंडिया में बहुत ज्यादा है। और ये बीमार ऐसा बीमार है, ऐसा कैंसर है जिसको हम लोग नॉट ओनली इसको अर्ली डायग्नोसिस नहीं, इसको हम लोग कैंसर होने से रोक सकता है या अर्ली स्टेज में हमको मिलने से इट इज ए क्यूरेबल डिजीज।
1: अच्छा, तो किसी को पता कैसे चलेगा कि उन्हें सर्वाइकल कैंसर है? क्या कोई सिम्टम्स जो लक्षण जो क्या हो सकते हैं वो बताइए।
2: एक्चुअली ये कैंसर आपका कोई भी एज ग्रुप में हो सकता है। मोस्ट कॉमनली हम लोग देखते हैं कि यूजुअली आफ्टर द एज ऑफ 30-35 में इट्स मोस्ट कॉमन ग्रुप, बट 50-55 इवन 60 ईयर्स में भी ये कैंसर को देखा गया है।
1: अच्छा।
2: और सिम्टम्स यूजुअली डेफिनेट सिम्टम्स अर्ली स्टेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
1: अच्छा, दिखाई नहीं देते हैं।
2: अच्छा। सबसे बड़ा बात यही है, हम लोगों को पता चलता है जब एक फीमेल बोलता है कि मेरा एक कंप्लेन हो रहा है बहुत दिन, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, तो जब जाके हम लोग एज ए डॉक्टर उसको जब चेक करते हैं ना, तब जाके मालूम चलता है कि उसको कैंसर फॉर्म हो ही गया। सो सिम्टम्स जब कैंसर डेवलप होगा तभी सिम्टम्स दिखाई देता है, जैसे कि उसको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा या कभी ब्लीडिंग होगा। सो एनी काइंड ऑफ इरेगुलर ब्लीडिंग, एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मल डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, तो उसको हम लोग सस्पेक्ट में आ ही जाते हैं।
1: रेगुलर ब्लीडिंग कितने दिन तक होता है ये बताइए।
2: रेगुलर एक फीमेल, कोई भी फीमेल रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप है इसमें आपका रेगुलर ब्लीडिंग यूजुअली 5-7 डेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं इसको, 5-7 डेज, एंड इट ऑकर्स यूजुअली आफ्टर 25-28 डेज इंटरवल में होता है। कभी कभी 30 डेज भी होता है, वेरिएशन होता है, किसी को 28 डेज, किसी को 32 डेज, किसी को 34 डेज।
1: तो आपने जैसे कि कहा कि जब काफी देर हो जाता है तभी लोग आते हैं चेकअप के लिए।
2: कोई लोग तो गांव में रहते हैं, डॉक्टर दूर में होता है और हर जगह में गायनेकोलॉजिस्ट होता भी नहीं, तो इसमें इधर उधर लोकल ट्रीटमेंट हो या कोई दूसरा फार्मेसी से ट्रीटमेंट हो या डिस्पेंसरी ट्रीटमेंट लेके रहते, जब उसका देखते हैं कि नहीं मेरा वीकनेस डेवलप हो गया, एडवांस हो गया, तब गांव से आके शहर में आते हैं गायनी डॉक्टर के पास आते हैं, सो बाय दैट टाइम इट गेट्स लेट।
1: अच्छा, इसका कारण क्या है कि क्यों ऐसी बीमारी क्यों हो जाती है?

0: एग्जैक्टली बोलने में तो आपका कैंसर का तो कोई कारण नहीं है, बट जैसे कि कुछ कुछ रिस्क फैक्टर्स हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि कोई रेस मान लीजिए, सो हम लोग देखा गया कि वर्ल्ड वाइड देखा गया ज्यूज एंड मुस्लिम्स में ये कमती होता है। यूजुअली देखा गया कि लो इकोनॉमिक ग्रुप या लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में जो गरीब होते हैं उसको ज्यादा होता है। एंड देन देयर आर सम रेशियल रिलीजियस बिलीफ्स में देखा गया कि जो मुस्लिम्स है ज्यूज है यूजुअली, एंड सर्वाइकल कैंसर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेक्सुअल एक्टिविटी। और देखा गया कि वो लोग ऑर्थोडॉक्स जो होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल पीरियड उस टाइम में भी वो लोग दूर में रहते हैं हस्बैंड से। तो देट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज ए रेशियल एंड रिलीजियस व्यू बट ए साइंटिफिक बेसिस भी वहाँ पे
1: अच्छा,
0: है।
1: अच्छा, वहाँ पे भी जाता है,
0: जहाँ पे जाता है कि ड्यूरिंग मेंसेस आप लोग हमेशा आपका अलग बैठना है। सो दिस इज बेसिकली ए सोशियो एंड कल्चरल एंड रिलीजियस नियम है। लेकिन देखा गया कि साइंटिफिकली इट इज ऑल्सो वेरी वेरी ट्रू। व्हाई ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आपका जब सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, रिसेंट जो स्टडी बोल रहे हैं जो लड़का का जो स्पर्म में जो स्पर्मेटोजोआ सेल होता है दैट इज कैंसरोजेनिक बोलता है। सो ड्यूरिंग मेंसेस जो सर्विक्स बोलता है वो एकदम सॉफ्ट होके बैठता है। जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी होगा तो क्या होगा, वो जाके स्पर्म सेल जाके वहां पे रिएक्शन होता है, रिएक्शन होके उसको सेल डेवलपमेंट ये करता है, सेल डेवलपमेंट करके जाके स्लोली स्लोली स्लोली स्लोली वो जाके कैंसर में कन्वर्ट होता है। एंड दैट इज व्हाई दिस इज द बेसिस बोला है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, जिसका मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है उसमें भी देखा गया कि वो औरत में ज्यादा होता है।
1: एक से ज्यादा जब आप शारीरिक संबंध बनाते हैं,
0: जब ये भी देखा गया कि जो लड़की कम उम्र में शादी होता है कम उम्र में बच्चा देता है मींस कम उम्र में वो सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट किया है तो उसमें भी ज्यादा होता है। ये हो गया सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। एंड आपका व्हाई इट इज रिलेटेड टू द ये सेक्सुअल एक्टिविटी इज और एक टू है देयर इज ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए वायरस इन्फेक्शन। कोई कोई को इन्फेक्शन होता है जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज HIV हो गया, हर्पिस वायरस हो गया, देन क्लामिडिया इन्फेक्शन हो गया, बट डायरेक्टली रिलेटेड टू कैंसर ऑफ द सर्विक्स इज अनदर वायरस दैट इज कॉल्ड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस।
1: अच्छा,
0: सो उसका इन्फेक्शन जिसको होता है तो वो लोग ज्यादा रिस्क में आते हैं। एंड देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाई रिस्क हस्बैंड। सो हाई रिस्क मेन इज दैट कि सपोज कोई एक पहला वाइफ या सेकेंड वाइफ फर्स्ट वाइफ और सेकेंड वाइफ उसका CA सर्विक्स कैंसर ऑफ द सर्विक्स होके मर गया, दैट मीन्स उसका नेक्स्ट वाइफ भी कैंसर होने का चांसेस है।
1: अच्छा, पति से लग सकता है उन्हें।
0: यस, दैट इज कॉल्ड हाई रिस्क मेल।
1: ओके ओके।
0: सो किसी किसी का स्पर्म सेल इतना ही कार्सिनोजेनिक होता है, रिएक्टिव होता है,
1: जो शुक्राणु है जो।
0: यस, दैट इज कॉल्ड हाई रिस्क मेल। तो वही एक कॉन्सेप्ट है। एंड देन यूजुअली इसका जो इंसिडेंस बढ़ गया, जो जैसे कि किसी किसी का हस्बैंड लोग दूर दूर में रहता है तो उसमें भी जाके कोई फीमेल से कोई दूसरा औरत से जाके सेक्सुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है।
1: और इसका टेस्ट कैसे करवाएं अगर कोई करवाना चाहे तो? जी,
0: ये बात वेरी इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन पूछा है हमको कि माने हमको कैसे टेस्ट करेंगे, और कोई भी फीमेल बोलेगी नहीं नहीं हमको कैंसर का टेस्ट करना है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट इज कॉल्ड पेप स्मियर। तो पेप स्मियर के साथ आजकल हम लोग रूटीनली जो अभी हम बोला ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो DNA है उसका भी हम टेस्टिंग करते हैं।
1: अच्छा,
0: तो पेप स्मेयर में हम लोग देखते हैं कि इट्स वेरी सिंपल टेस्ट, कोई भी औरत कर सकता है, एनी टाइम कर सकता है, उसका कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए, इट्स वेरी सिंपल टेस्ट, कोई पेन नहीं होता है और कोई ऑपरेशन नहीं है, इट्स नॉट ए बायोप्सी, सिंपल एक स्मेयर ले लेते हैं, उसको हम लोग भेज देते हैं, उसमें हम लोग अभी देखते हैं कि एबनॉर्मल सेल्स आया है कि नहीं, बीमार कैंसर डेवलप होने से पहले ही हम लोग को मालूम समझेंगे ये फीमेल कैंसर होने जा रहा है।
1: अच्छा,
0: तो उसका पेप स्मियर में जो सेल्स आएगा देन साथ से साथ में हम लोग ह्यूमन पेपिलोमा वायरस DNA टेस्टिंग भी होता है। तो सपोज किसी को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पॉजिटिव हो गया, माने DNA वायरस, उस वायरस का DNA पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स उसको आज कैंसर नहीं हुआ है, पता नहीं 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल आगे जाके हो सकता है। सो दैट्स व्हाई हम लोग यही बोला है कि स्क्रीनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कहीं पे भी एट द लेवल ऑफ पब्लिक हेल्थ सोशल हेल्थ एंड हम लोग का एज ए गायनिकोलॉजिस्ट ऑल्सो वी ऑलवेज एनकरेज दैट यू शुड गो फॉर स्क्रीनिंग। इसका क्राइटेरिया ये नहीं कि सपोज कोई भी फीमेल एक तो नॉर्मल है, उसका कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, इसका स्क्रीनिंग जो है वो टेस्ट साल में भी नहीं, मे बी वंस इन ए टू ईयर रिकमेंडेशन
1: करना चाहिए। अच्छा।
0: दो साल में एक बार ही करना है अगर कोई कंप्लेन नहीं। हाँ, किसी को कंप्लेन है देन यू कैन वंस इन ए ईयर कर सकते हैं।
1: आपने जो पेप स्मियर कहा इसका जो प्रेस्क्रिप्शन के लिए डॉक्टर के पास जाने के बाद ही किया जाता है ये टेस्ट या फिर वो खुद भी कर सकते हैं और आप लोगों के पास रिपोर्ट भेज सकते हैं?
0: एक्चुअली पेप स्मियर यूजुअली इज टेकन बाय द डॉक्टर।
1: अच्छा,
0: गायनोकोलॉजिस्ट।
1: अच्छा,
0: आइडियली
1: जी डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा।
0: और ये क्लिनिकल असिस्टेंट और ए नर्स हु इज ट्रेन्ड इन गायनोकोलॉजी दे सकते हैं।
1: अच्छा, अब मैं पेप स्मियर के बारे में और एक बात जानना चाहूंगी कि कोई अगर पेप स्मियर के लिए जाने वाला है या अगर हमारे लिसनर्स कोई जाने वाले हैं तो उन्हें क्या प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, ऐसा कुछ
0: कोई प्रिपरेशन नहीं?
1: अच्छा अच्छा,
0: खाली बस ड्यूरिंग मेंस को नहीं करना।
1: अच्छा, पीरियड के आसपास नहीं करना चाहिए
0: बस।
1: अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल है, क्या इससे बचा जा सकता है?
0: यस, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यस, as a gynae specialist I can say that ki cancer of the cervix is a preventable disease or it is a curable disease. That's why hum log bahut encourage karte hain ki we should go for screening and testing, kyunki jo cancer of the cervix jo prevention kaise hote, because abhi most of the cases, majority of the cases jo mil rahe hain hum logo ko is due to human papilloma virus infection. And the good news is that ki iska एक तो वैक्सीन आ ही गया मार्केट।
1: अच्छा, ये सर्वाइकल कैंसर की?
0: यस।
1: अच्छा,
0: इसका वैक्सीन मार्केट में आ गया है एंड वी आर गिविंग वैक्सीनेशन टू दोज हु आर पॉजिटिव और हु आर नॉट पॉजिटिव एज ए प्रिवेंशन। सो इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 45 इयर्स ग्रुप वी आर गिविंग इंजेक्शन टू एवरीबॉडी। हाँ, जो कैंसर डेवलप कर लिया उसमें तो उपाय नहीं है, बट जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस डीएनए पॉजिटिव, कुछ बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, डीएनए पॉजिटिव, या कोई लोग बहुत एंशियस है, नहीं हमको तो कैंसर नहीं होना है, हम तो वैक्सीनेशन करना चाहते हैं, तो दे कैन गो फॉर इट। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज।
1: जी जी, yes. बहुत ही अच्छी खबर है। तो क्या ये फिलहाल हॉस्पिटल में ईटानगर में अरुणाचल में उपलब्ध है ये?
0: इट इज अवेलेबल इन हम लोग का ईटानगर में, इट अवेलेबल है स्पेशली इन माई सेंटर, मेरा जो हॉस्पिटल है वहाँ पे अवेलेबल है और हम बहुत को दे चुका है एंड देन मैं एनकरेज करता हूँ और लोगों को नॉलेज दे के मैं दे रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: और भी बात है कि सपोज ये बीमारी अगर हमको अर्ली स्टेज में मिल जाते हैं, मान लीजिए स्टेज जीरो या स्टेज वन, और उसका स्टेज है आपका माइक्रोस्कोपिक, सपोज पेप स्मियर में पॉजिटिव मिल गया।
1: अच्छा,
0: देन हम अगर उसको उसी टाइम में ट्रीटमेंट कर लेंगे, माने ऑपरेशन कर लेंगे या ट्रीटमेंट कर लेंगे, तो ऑपरेशन करके उसको सर्विक्स को हटा देंगे और बाकी जो केमो या रेडिएशन जो भी सही है एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हम लोग दे देंगे, तो देखा गया कि ये इट इज ए क्यूरेबल डिजीज। क्यूरेबल डिजीज टू माय एक्सपीरियंस, अभी मैं 10 साल पहले जिसको ऑपरेशन कर दिया, स्टिल सी इज वर्किंग इन द स्कूल और इन ए गवर्नमेंट सेक्टर।
1: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी, आपने जो वैक्सीनेशन की बात की है वो साल में कितने बार वैक्सीनेशन लिया जा सकता है या फिर एक ही बार
0: साल में? हर साल लेना पड़ेगा ऐसा बात नहीं है, आपको ओनली 3 इंजेक्शन लेना पड़ता है इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, जैसे कि आज आप एक ले लिया है, 2 महीने के बाद एक ले लिया है और 6 मंथ्स के बाद एक ले लिया है।
1: अच्छा अच्छा, इसके अलावा वैक्सीनेशन के अलावा और क्या इसमें कोई इस क्षेत्र में कोई विकास गतिविधि क्या की जा रही है?
0: अपार्ट फ्रॉम वैक्सीन इज दैट आपका मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट की हेल्दी सेक्सुअल हैबिट्स, देन मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज द यूज ऑफ द कॉन्डम एंड आपका जो क्रॉनिक जो इन्फेक्शन होता है वो सबको ट्रीटमेंट करना है एंड देन बट विच वुड एनकरेज कि लड़की का जो शादी है बहुत ज्यादा अर्ली एज में शादी नहीं कराना है।
1: अच्छा अच्छा,
0: और मल्टीपल पार्टनर सब अवॉइड करना है।
1: अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो क्या समस्याएं आगे आ सकती है किसी के लिए जीवन में?
0: जीवन में अभी आप देखिए, एक बार अगर कैंसर किसी को डेवलप हो जाते हैं, सो यूजुअली स्टेज 4 एंड स्टेज 3 इज ऑलमोस्ट नॉट ट्रीटेबल, तो इसका जो कैंसर से दो जो डेथ होता है बहुत पेनफुल होता है। तो हम लोग अभी एक ही कैंपेनिंग है कि हम लोग कभी नहीं चाहता है कि एक कैंसर ऑफ द सर्विक्स का जो केस है उसको हम स्टेज 3 तक हम लोग जाने देना ही नहीं। हम लोग जितना भी हो स्टेज 1 में उसको डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट को शुरू कर देना है। देन देखा गया कि उसका लाइफस्टाइल एंड देन हेल्थ एंड देन सर्वाइवल इज वेरी वेरी गुड एंड एक्सेलेंट।
1: अच्छा, कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी कि उनको बच्चा करने में कुछ समस्या आए, ऐसा तो कोई बात नहीं होगी?
0: यस, जी बच्चा करने के लिए एक्चुअली क्या है आपका, सपोज कोई एक तो यंग लेडी कैंसर डेवलप करता है एंड आफ्टर दैट शी वांट्स टू गेट मैरिड एंड बच्चा भी देना चाहता है तो उसका ऑपरेशन अलग से होता है
1: सर्वाइकल कैंसर में ही
0: yes. जी जी उसका क्या होता है इफ इट इज ए वेरी अर्ली स्टेज ओनली द कैंसर पोर्शन हम लोग ऑपरेशन करके निकाल लेते हैं उसके बाद उसको हम लोग बच्चा होने के लिए भी एनकरेज करते हैं
1: अच्छा
0: कर सकते हैं
1: जी जी जी तो उसमें कोई समस्या इतनी नहीं आई अगर हटा दें तो
0: बट इट शुड बी डायग्नोस्ड मैंने बहुत अर्ली स्टेज में उसको पकड़ना पड़ेगा
1: जी जी
0: डायग्नोस करना पड़ेगा
1: अब मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को आपने पहले मासिक धर्म के जो सही सामान्य जो दिन होते हैं उनके बारे में बताइए 5 से 7 दिन तक जी और आपने साइकिल बताया 25 से 30 दिन तक नॉर्मल साइकिल होता है तो उस साइकिल को कैसे गिने कोई क्योंकि किसी किसी के लिए ये समस्या भी हो सकती है कि वो गिने कैसे नॉर्मल साइकिल जो है
0: जी मेंस्ट्रुअल साइकिल एज ए अभी हम लोग बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल इज यूजुअली जिस दिन शुरू होता है उसको बोलता है डे वन बोलते हैं हम लोग
1: अच्छा
0: ठीक है
1: जिस दिन मासिक धर्म शुरू होता है
0: यस मासिक जिस दिन स्टार्ट होगा उसको हम बोलते हैं डे वन एंड डे जिस दिन खत्म होता मैंने ये फुल टर्म इज 20 यूजुअली इट इज 28 डेज साइकिल बोलते हैं नॉर्मली
1: जी
0: 28 डेज साइकिल में इसमें प्लस माइनस आपका 7 डेज हो सकता है 5 डेज या 7 डेज आगे हो सकता है या 5 डेज 7 डेज पीछे हो सकता है
1: अच्छा
0: तो नॉर्मल साइकिल इज 28 डेज 28 डेज में आप प्लस 7 डेज कर दो या माइनस 7 डेज कर दो इज ए नॉर्मल साइकिल और जो ब्लीडिंग पीरियड है इट्स 5 to 7 डेज तो इसका अलावा आपका अगर मैंने सपोज 7 डेज से ज्यादा हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगा और जिसका सपोज ब्लीडिंग 1 दिन या 2 दिन ही होगा उसको बोलता है कि कमती होता है
1: ब्लीडिंग तो वो भी सही नहीं है
0: वो भी सही नहीं
1: जी जी
0: तो मिनिमम 4 to 5 डेज तो ब्लीडिंग होना है एंड बाय 7 डेज इट शुड क्लियर अप तो इसको बोलते हैं नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल
1: जी जी
0: और हमेशा मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग गिनती करेंगे इन टर्म्स ऑफ एवरी थिंग सपोज किसी को कुछ ट्रीटमेंट देना है किसी को फैमिली प्लानिंग करना है किसी को बच्चा देना है किसी को बच्चा नहीं देना है तो ये डे वन से ही काउंटिंग होगा उसी में आपका काउंटिंग शुरू होता है
1: जी जी
0: आज मेंस आपका किसी का शुरू हो गया तो मीन्स 11 तारीख इज द डे वन से काउंटिंग होता है
1: अच्छा
0: तो बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं जी जिस दिन खत्म हो जाता है उससे काउंटिंग
1: हाँ, जी जी वही
0: तो वही है कंफ्यूजिंग वही रहता है कि फर्स्ट डे से काउंटिंग करेंगे या हम लोग खत्म होना
1: तो पहला दिन से काउंट करने के बाद जो दूसरा जो आपका मासिक धर्म शुरू होगा उस मासिक धर्म के पहले दिन को गिन के ये होगा सामान्य साइकिल
0: या ये बहुत ये कैलकुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज सपोज आपका एक और प्रेग्नेंट हो गया है प्रेग्नेंट होने के बाद में हम लोग उसको पूछेंगे आपका मेंस लास्ट मेंस कब हुआ था वो बोलेगा कि सर 2 महीना पहले हुआ था तो कौन सा महीना में हुआ था जुलाई में हुआ था से तो जुलाई में था जुलाई का कौन तारीख वो बोलेगा सर जुलाई का तो 10 तारीख को हमको खत्म हो गया था तो देट इज नॉट इम्पोर्टेंट सो इवन डे वन इज सो इम्पोर्टेंट क्यों बिकॉज जब मेंस हम लोग जो प्रेगनेंसी को डेटिंग करता है या काउंटिंग करता है और उसका डिलीवरी डेट को कैलकुलेशन करता है तब भी हम लोग डे वन से ही गिनती करते हैं डे वन ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड सो आफ्टर फ्रॉम दैट वी कैलकुलेट एंड फॉर्मूला में कैलकुलेट करके एक औरत का डिलीवरी का डेट को भी हम लोग बता सकते हैं
1: इस तरह से किया जाता है
0: यस yes.
1: अच्छा yes. अब आखिर में हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को अपनी ओर से कोई संदेश दें
0: मेरा एक ही संदेश है कि महिला हम लोग का समाज का तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है सो महिला नहीं होने से तो ना घर चलेंगे ना देश चलेंगे ना कुछ नहीं चलेंगे सो एज ए मैंने गायनी डॉक्टर का हिसाब से मैं यही बोलना चाहता है कि जो ये कैंसर ऑफ द सर्विक्स हम लोग का ये समाज में बहुत कॉमन और बहुत मैंने डेली मिलने वाला ही बीमार है तो इसको हम लोग प्रिवेंट करने के लिए इससे बचने के लिए प्रिकॉशंस को लेना है और अपना बेटियों को एटलीस्ट 18 ईयर्स का नीचे में शादी नहीं कराना है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं जो सोचता हूँ ये जो सर्वाइकल कैंसर को बचाने के लिए प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को डॉक्टर को या हेल्थ वर्कर को जरूरी नहीं है अभी हम लोग समाज में जाके हम लोग स्कूल में जाके इसको प्रिवेंट कर सकता है बाय द वे ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन ये घर में भी कर सकता है अपना पेरेंट्स अपना बेटियों को सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में अच्छा से समझाना है सेक्सुअल एजुकेशन उन लोग को देना है इसको हम लोग क्या सोचते हैं हम लोग का समाज में एक ताबू या शर्म लगता है सेक्स का बारे में डिस्कस करने के लिए तो वो ऐसा नहीं होना है तब जाके सेक्सुअल जब अवेयरनेस हो जाएंगे देन दे विल अवॉइड अननेसेसरी सेक्सुअल हैबिट्स और सेक्सुअल पार्टनर्स आपकी. सो जब तक ये नहीं सुधरेंगे तब तक आपका ये प्रिवेंटेबल डिजीज नहीं हो सकता है. एंड जो मैं जो बोला अबाउट वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन को वॉलेंटरीली कराना है
1: जी.
0: 15 इयर्स से लेके 45 तक. एंड देन मास एजुकेशन, जैसे कि आपका एनजीओस होता है, वॉलेंटरीज ऑर्गेनाइजेशन होता है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो लोग को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पैप स्मेयरिंग स्क्रीनिंग आपका गांव-गांव में, आपका हर हेल्थ सेंटर में, अगर उधर में जाएंगे हेल्थ जो डॉक्टर है या हेल्थ सेंटर में जाके आप अगर एनकरेज करेंगे नहीं हम लोग को महीना में एक बार तो आप लोग स्क्रीनिंग कराना है और लोगों को, तो उसमें भी आपका बहुत हम लोग इसको बीमार होने से पहले ही उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे और उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकता है और ट्रीटमेंट भी कर सकता है.
1: जी जी. तो श्रोताओं, सर्वाइकल कैंसर जैसा आप लोग सोचते हैं कि बहुत ही खतरनाक है, इसका इलाज नहीं हो सकता, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसका इलाज हो सकता है अगर आप जल्द से जल्द अपनी टेस्ट करवाए, तो अगर सही तरीके से पता चल जाए कि आपको सर्वाइकल कैंसर है और शुरू के स्टेज में ही है, तो इसका इलाज हो सकता है. आप बिल्कुल ना डरे और साल में एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाए और अपनी टेस्ट कराए सर्वाइकल कैंसर के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अहमद जी आज के इस महिला जगत का हिस्सा बनने के लिए.
0: थैंक यू वेरी मच.
1: तो इसी के साथ ही आज के महिला जगत में बस इतना ही. अब मुझे यानी कि केन्यू आंगो को आज्ञा दीजिए. नमस्कार.

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ दिल से दिल की बात।
1: I love my eco because it's got more power.
2: And it also comes with all new safety features.
3: We love our eco because we can bring all our friends.
4: We love our eco because it's made every journey special.
5: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
6: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
5: Get attractive offers up to ₹30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
7: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे विमेन एंड फैमिली प्रोग्राम इंटरव्यू ऑन सर्वाइकल कैंसर बाय डॉक्टर सलीम अहमद। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और दोस्तों अब वक्त है हमारा कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। इस कार्यक्रम में, इस सेगमेंट में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कुछ बेहतरीन हिंदी फिल्मी गीतों का कारवा। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे गीत से, फिल्म तुम मिले का टाइटल ट्रैक तुम मिले। दोस्तों इस फिल्म में आप देख सकते हैं इमरान हाशमी और सोहा अली खान को। इस गीत के निर्देशक है प्रीतम, गीत के लेखक है नीरज श्रीधर। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों चलिए अब हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के सेगमेंट में सुनाते हैं आपको अगला गीत फिल्म बर्फी से। पापोन और सुनिधि की जुगल आवाज में सुनते हैं क्यों।

0: Love my Eco, cause it's got more power.
1: And it also comes with all new safety features.
2: We love our Eco, cause we can bring all our friends.
0: We love our Eco, cause its made every journey special.
1: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
4: दोस्तों आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और आज इस सेगमेंट में हम आपको सुना रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का कारवां, कुछ हसीन गीत जो आपके मूड को कर देगा ठीक। चलिए अब सुनते हैं अगला सॉन्ग, और अगला सॉन्ग है फिल्म उंगली से, जिसे गाया है गुलराज सिंह ने। संगीत के निर्देशक है खुद गुलराज सिंह, और वहीं पे गीत के बोल लिखे हैं मनोज यादव ने। चलिए सुनते हैं फिल्म उंगली का पाकीज़ा।

0: जनगणना से जन कल्याण सबका डेटा देश का मान जनगणना से जन कल्याण आपका सहयोग देश निशान अरुणाचल प्रदेश के प्रिय निवासियों तैयार हो जाइए पहले डिजिटल जनगणना में भाग लेने के लिए।
1: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जनगणना 2027 चरण एक मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना की घोषणा की है। ये है भारत की पहली डिजिटल जनगणना।
0: 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
1: 1 मई से 30 मई 2026 तक जनगणना प्रगणक डेटा संग्रह के लिए हर घर का दौरा करेंगे।
0: कृपया सही जानकारी प्रदान करें और जनगणना प्रगणकों का पूरा सहयोग करें ताकि प्रभावी योजना और विकास संभव हो सके।
1: जनगणना से जन कल्याण आपकी भागीदारी है जरूरी। जनगणना 2027 मिलकर बनाए एक बेहतर अरुणाचल एक बेहतर भविष्य। जनगणना से जन कल्याण।
2: I love my Eco, cause it's got more power.
3: And it also comes with all new safety features.
4: We love our Eco, cause we can bring all our friends.
5: We love our Eco, cause it's made every journey special.
3: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
6: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
3: Get attractive offers up to ₹30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
7: दोस्तों आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक और हम सुन रहे हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का ये प्यारा सा कारवा। दोस्तों अब चलिए आपको एक और गीत सुना देते हैं फिल्म तेरे नाम से उदित नारायण की आवाज में, जिसका निर्देशन किया है हिमेश रेशमिया ने और लिखा है समीर ने। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस गीत के तुरंत बाद आप सुनेंगे अपना गीत का कार्यक्रम, जिसके बाद प्रस्तुत होगा वेस्टर्न मेलोडीज का कार्यक्रम किदवांग आनंद के साथ।

नई आशा और अटूट विश्वास के साथ आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। मैं आपके रेडियो साथी गैर अतर आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। उम्मीद आप सभी की सलामती की, आशा कुछ और पल आपकी जिंदगी में खुशियां भरने की और विश्वास हर दम आपके साथ जुड़ने का। जी हाँ श्रोताओ, जब भी कार्यक्रम अपना गीत लेकर आती हूँ, ये जरूर सोचती हूँ कि आप अपने ही प्रदेश के गीतों को सुनकर कुछ अपनी पुरानी यादें ताजा करते होंगे तो कुछ आज के संगीत पर धुन मिलाते होंगे। और इसी आशा के साथ लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत, मेडिको मेंजो की आवाज में ईदू गीत।

सो केपक्री द्वारा गाए गीत आप सुन रहे थे मिजू मिश्मी भाषा में। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जो आप तक पहुंच रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज पर। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं अगला गीत निशी भाषा में, और आवाजें हैं तोको तेनी और यामी लाजी की।

दोस्तों, हमारी सोच, हमारी चाहत और कल्पना की सीमा ही क्या होती है। सोचो, अगर हम एक तितली होती तो क्या करते? बेशक खिले हुए फूलों की क्यारियों में जाते, उनके रंगों के साथ खेलते, रस का आनंद लेते। और इनसे भी मजेदार बात यह है कि ये जो चाहत है ना, अक्सर कई लोगों की एक सी होती है। जी हाँ, चाहतों की पूरी लिस्ट के साथ पेश है अगला गीत, गालो भाषा में झुमकेन रालेन की आवाज में।

श्रोता कापांग सोसिया द्वारा गाए इसी नोक्ते गीत के साथ कार्यक्रम अपना गीत का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। हमें आशा है कि हमारे श्रोता मित्रों को कार्यक्रम पसंद आए होंगे और इसी आशा के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

गुड इवनिंग दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वेस्टर्न मेलोडीज का कार्यक्रम खिदवांग आराम के साथ। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। आप सभी को शुभ संध्या। अब हो चुका है 9 बजे का वक्त और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और स्पेशल म्यूजिकल सेगमेंट, जिसे हम कहते हैं भूले बिसरे गीत। ये वो शाम है जब शहर की रौनक धीरे धीरे कम हो रही है। लोग अपनी छतों पर या अपनी बालकनी में हल्की सी चाय के साथ बैठ रहे हैं और दिल चाह रहा है एक छोटी सी म्यूजिकल जर्नी की, जो ले जाए हमें बीते हुए पलों के साथ। भूले बिसरे गीत में आप सुनेंगे पुराने हिंदी मेलोडीज, वो नगमे जो हमारे दादा दादी के जमाने से लेकर हमारे बचपन तक हमेशा दिल के करीब रहे। ये गाने सिर्फ सुरों का संग्रह नहीं, ये यादों की खजाना है। हर नोट एक कहानी कहता है, हर लिरिक्स एक याद जगाता है। चाहे किशोर कुमार की प्लेफुल आवाज हो, लता मंगेशकर का सोलफुल टच हो, या मोहम्मद रफी की जादू भरी सिंगिंग, ये क्लासिक्स हमेशा एक अलग ही मैजिक क्रिएट करते हैं। आज के शाम हम वापस ले जा रहे हैं उन पलों में जब रेडियो पे बस एक ही गाना बजता था और पूरा घर उसी सुर में डूब जाता था, जहां म्यूजिक स्लो होता था और हर शब्द को दिल से महसूस किया जाता था। तो चाहे आप घर के लिविंग रूम में कंफर्टेबल सोफा पर हो या ट्रैफिक से थक कर कार में बैठ गए हो, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और फील कीजिए वो पुराने मेलोडीज का जादू। अगले कुछ पल में आप

0: सुनेंगे टाइमलेस क्लासिक्स, रोमांटिक बैलेड्स, दर्द भरे गीत और कुछ वो मेलोडीज जो सरप्राइजेस की तरह आपके दिल को सुकून देंगे। मैं हूँ आपकी आरजे मंच और यह है आपका म्यूजिकल गेटअवे भूले बिसरे गीत सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, और शुरू करते हैं हमारे भूले बिसरे गीत का सफर एक क्लासिक के साथ जो हर बार सुनने पर दिल को एक मुस्कान दे जाता है। ये गाना है एक ऐसी फिल्म से जो अपने टाइम की कॉमेडी, रोमांस और म्यूजिक के लिए लेजेंडरी था। फिल्म का नाम था चलती का नाम गाड़ी और इसके साथ है दो अनफॉरगेटेबल आवाज मन्ना दे और किशोर कुमार। ये दोनों मिलकर एक ऐसी केमिस्ट्री क्रिएट करते हैं जो पुराने बॉलीवुड सॉन्ग्स का चार्म ही कुछ और। तो चाहे आप घर में रिलैक्स कर रहे हो या शाम की थोड़ी सी शांति एंजॉय कर रहे हो, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए और तैयार हो जाइए एक क्लासिक म्यूजिकल राइड के लिए। ये रहा आपके सामने बाबू समझो इशारे।
1: बाजू

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

दोस्तों, क्या आपको पता है कि किशोर कुमार को योडलिंग किंग ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं? और उन्होंने योडलिंग अपने आप से सीखी है। उन्होंने एक ऑस्ट्रियन सिंगर के योडलिंग स्टाइल को देखकर उन्होंने इसे अपने सॉन्ग्स में, अपने सिंगिंग स्टाइल में, अपने रिपर्टियरिंग में इसे ऐड किया। और आज तक का सबसे बेस्ट योडलर इंडिया में किशोर कुमार को ही माना जाता है। उनके बहुत सारे योडलिंग सॉन्ग्स, जैसे कि जिंदगी एक सफर है सुहाना फिल्म अंदाज से आप सुन सकते हैं, याराना में उसका गीत छूकर मेरे मन को, जहां उन्होंने योडलिंग ऐड किया। फिर फिल्म झुमरू का कोई हमदम ना रहा, उसमें भी उन्होंने योडलिंग से लोगों का दिल जीता। और फिल्म आशा का मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग इना मीना डी का, इसमें भी उनके योडलिंग स्किल्स का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन आप देख सकते हैं। मुझे काफी पसंद है किशोर कुमार की योडलिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको अगला गीत। अब अगला गीत ले आता है आपके लिए थोड़ी थ्रिल, थोड़ी मस्ती, और वो क्लासिक रेट्रो मैजिक जो 70s की बॉलीवुड मेलोडीज में बस है ही। ये गाना है फिल्म कारवां से, एक ऐसी फिल्म जो अपने म्यूजिक और स्टाइल के लिए हमेशा याद रहेगी। और अब आप सुनेंगे सुपरहिट ट्रैक गोरिया कहा तेरा देश रे, जिसमें आपको मिलेगा वो परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फन, फ्लर्टेशियस एनर्जी। तो अपने शाम को और भी ग्रूव दीजिए, आंखें थोड़ी सी बंद कीजिए और महसूस कीजिए वो पुरानी फिल्मी मस्ती का जादू। ये रहा फिल्म कैरवान से गोरिया कहा तेरा देश रे।

दोस्तों, और अब हमारे भूले बिसरे गीत के शाम में आ रहा है एक और क्लासिक, एक ऐसा मेलोडी जो रोमांटिक वाइब्स और कश्मीर की खूबसूरती दोनों के साथ ले आता है। ये गाना है फिल्म कश्मीर के कली से, एक फिल्म जो अपने सीनिक ब्यूटी, लव स्टोरी और मेमोरेबल म्यूजिक के लिए हमेशा याद रहेगी। और इस मास्टरपीस को गाया है लेजेंडरी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की जोड़ी ने, जिनकी आवाज में इतनी वार्म्थ और चार्म है कि हर नोट डायरेक्टली दिल को छू जाता है। तो आपकी शाम को एक जेंटल रोमांटिक टच देने के लिए ये रहा फिल्म कश्मीर की कली से दीवाना हुआ बादल।

0: I love my Eco, cause it's got more power.
1: And it also comes with all new safety features.
2: We love our Eco, cause we can bring all our friends.
0: We love our Eco, cause it's made every journey special.
3: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
4: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
3: Get attractive offers up to ₹30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
5: दोस्तों, अब हमारे भूले बिसरे गीत के शाम में आ रहा है एक फिल्मी जेम जो हमेशा दिल को खुशी से भर देता है। ये गाना है फिल्म हम किसी से कम नहीं से, एक ऐसी फिल्म जिसमें रोमांस, ड्रामा और अनफॉरगेटेबल म्यूजिक का परफेक्ट मिक्स था। और इस आइकॉनिक ट्रैक को गाया है लेजेंडरी मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, जिनकी आवाजों को का कॉम्बिनेशन हमेशा एक प्लेफुल और रोमांटिक एनर्जी क्रिएट करता है। तो आपकी शाम को थोड़ी सी मस्ती और चार्म देने के लिए ये रहा ये लड़का हाय अल्लाह।

दोस्तों, और इसी के साथ हमारे भूले बिसरे गीत का सफर यही समाप्त होता है। आज की शाम हमने गुजारे पुराने यादों और टाइमलेस मेलोडीज के साथ, उन आवाजों के साथ जो न सिर्फ सुरों में खूबसूरत है बल्कि हमारे दिल के कोने में छुपी यादों को भी जगाते हैं। हर गाना एक कहानी कहता है, हर लिरिक्स एक पल याद दिलाता है और हर सुर हमें वो शांति और वो सुकून देता है जो शायद सिर्फ पुरानी फिल्मी मेलोडीज में ही मिलता है। दोस्तों, जैसे कि एक मशहूर शायर ने कहा है, जिंदगी में सिर्फ दो चीजें हमें

0: हमारे साथ होती है, एक यादें और दूसरा सुर। आज हमने यही दो चीजें आपके साथ शेयर की और उम्मीद है कि ये गीत आपके दिल को छू गए होंगे। आप सभी को दोस्तों मेरी तरफ से यानी आरजे मंच की तरफ से शुभकामनाएं। सेहतमंद रहिए, खुश रहिए और छोटी छोटी खुशियों और मेलेडियस पलों को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अपने परिवार और दोस्तों के साथ मुस्कान बांटते रहिए और म्यूजिक को हमेशा दिल के करीब रखिए। दोस्तों इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं हमारे आज की प्रसारण सभा में। आप सभी को बता दूं कि इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद थे अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय एवं तकनीकी अभियंता पीपी द्योरी। इसी के साथ हमारी आज की ट्रांसमिशन दोस्तों यही तक। आगे आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले एफएम गोल्ड के लिए। तो मेरे तरफ से दोस्तों गुड नाइट और फिर मिलेंगे एक और म्यूजिकल सफर के साथ, नए सुरों, नए जज्बात और उन यादों के साथ जो हमेशा हमारे दिल में बस जाती है। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है।
1: ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा नाटक कूपे।
2: ये है मेरा कूपे। जूडिस का प्रोग्राम अचानक बदल गया, मैं उसका टिकट वापस करने जा रहा था। आपको आपत्ति न हो तो?
3: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके साथ तो 10 दिन तक साधना केंद्र में रही हूँ। एक अजनबी आदमी के साथ सफर करना मुझे बुरा नहीं लगता।
2: कूपे में भी?
3: क्यों, कूपे में क्या है? दो बर्थ है, उन पर कोई भी दो यात्री सफर कर सकते हैं। दो स्त्री दो पुरुष या एक स्त्री एक पुरुष?
2: जी हाँ, एक स्त्री और एक पुरुष दो ही होंगे इस कूपे में। अच्छा सफर कटेगा।
3: हाँ, नींद अच्छी आएगी या शायद बिल्कुल नहीं आएगी।
2: आप में जीवट है, लेकिन 10 दिनों तक तो आप
3: वहाँ सबको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैंने किया। साधना करने आए थे हम लोग।
4: अच्छा, मैम साहब आ गए? आप तो कह रहे थे।
2: सुनो कलेक्टर, दो कप कॉफी मिलेगी? लेकिन रुको शांतना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया है।
3: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर, मेरे लिए केवल एक कॉफी।
4: जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी।
2: और मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा। 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना ना, अब और मन को नहीं मार सकता।
3: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं ध्यान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी।
2: ओके, लौट कर बातें होंगी।
3: ओके।
4: मैम साहब, ये रही कॉफी, कुछ और चाहिए?
3: नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला, सोने से पहले अपनी डायरी लिख लूं। गुरुजी दूसरे महात्माओं से कितने भिन्न हैं, वो न प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं न दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है। वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं इनके सामने। वो जूडिथ जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन की सारी परतें खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपनी प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची,
5: कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही।
6: ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है, मेरी तरह। अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही।
5: अच्छा,
6: मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ।
5: क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं?
6: मेरी शादी नहीं हुई है
5: क्या?
6: लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर है, ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं। उनसे ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है।
5: आप कितने दिन से घूम रही हैं?
6: कई वर्ष हो गए।
5: आपके बहुत मित्र हैं?
6: स्वाभाविक है, अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ। उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
5: बुरा तो नहीं मानोगी, तुम ग्रास, डोप, चरस, एलएसडी आदि का सेवन करती हो?
6: करती हूँ, उनसे मुझे आनंद मिलता है, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती। वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है।
5: तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाया जा रहा है? क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं, महात्माओं, योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो?
6: बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उधार का आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर में से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ।
3: जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे। सेक्स, नशा, सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ है जो परिवार के शासन से परेशान है, कुछ को आज के शोषण की राजनीति त्रस्त करती है। वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास से ऊब चुके हैं। ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है और वो उस आनंद की तलाश में है जो उन्हें शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे।
5: आती हूँ।
2: बाहर भी वर्षा होकर चुकी है, मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है। अरे आप एक लिखे जा रही हैं? कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद, देख सकता हूँ?
5: ये मेरी डायरी है।
2: तब नहीं देखूंगा, डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
5: बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं।
2: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी।
7: खिड़की खोल दूं, वर्षा से भीगी हवा आने दो।
2: मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
5: सब काम पूछकर ही करते हैं आप।
2: थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं। आप पीती हैं?
5: पीती तो नहीं पर प्रतिज्ञा भी नहीं की।
2: तो मेरा साथ दीजिए, थकान भी तो उतारनी है।
5: मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ।
2: प्लीज साथ देने के लिए एक पैक।
5: जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए।
2: और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊं तो?
5: पीजिए।
2: बुरा मान गई, प्लीज। बात यह कि मैं साथी के बिना रह ही नहीं सकता। बहुत घूमा हूँ हिप्पियों के साथ, जिप्सियों के साथ। कितनी मुक्त और सहज है ये विदेशी युवतियां, बड़े मजे के साथ कह सकती हैं लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूँ लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ।
5: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ।
2: नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती। दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
5: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
2: गणित, विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे, सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना अकेले पीते अच्छा नहीं लगता। छोटा पैक लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
5: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
2: आप ऊपर कैसे जाएंगे?
5: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है, आप पुरुष है ना। मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
2: नाराज ना होइए। अच्छा, मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुरा कर लौट गया। अरे अब फिर नाराज हो रही है, प्लीज।
5: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडिथ के साथ बहुत रहे हैं।
2: बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूँ, वी हैव मेड लव मैनी टाइम्स, लेकिन वहां गुरुजी का आदेश था 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। फिर दिक भी तो यही था, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई, जूडिथ को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे,
5: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
2: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई, तुम उससे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक, तुम्हारी मांसल देह, तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारे लंबे सुनहरी बाल।
5: बहुत बहुत शुक्रिया, 10 बज चुके हैं।
2: प्लीज अभी कुछ देर और बैठूंगा।
5: बैठे रहो।
2: तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूँ?
5: नहीं।
2: तुम्हें छू सकता हूँ?
5: नहीं।
2: मेरी प्रेम कहानी सुनोगी?
5: नहीं।
2: क्यों?
5: क्योंकि सब एक जैसी होती हैं, वैसे ही जैसे तुम सब पुरुषों का व्यक्तित्व एक जैसा होता है। सोने का समय हो गया, जाओ सो जाओ और स्वप्न देखो।
2: मेरा मन तो तुमसे बातें करने को करता है।
5: बातें मुंह से की जाती हैं, हाथों से नहीं।
2: सांत्वना, सांत्वना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, सांत्वना।
5: मुझसे प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ। लेकिन सरजीत, तुम सचमुच प्रेम करते होते तो जतलाते नहीं, प्रेम निर्लज्ज नहीं होता।
2: यानी नैतिक होता है। शरीर को बचाने के मुंह में तुम अच्छे तर्क कर लेती हो।
5: शरीर को बचाने का मुंह मुझे कभी नहीं रहा, परंतु वो मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है। जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही हैं। न जाने कितनी गांठें पड़ी हैं उनके मन में, माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह। व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती हैं, स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने।
2: वही वही वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे, उस आनंद को? मेरे पास है, पियोगी?
5: सरजीत, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो, अब चले जाओ।
2: और न जाऊं तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, प्लीज प्लीज सांत्वना, प्लीज।
5: नहीं नहीं, पीछे हटो, हटो पीछे।
2: मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा, किसी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया।
5: लेकिन मैं हटा दूंगी, मर्द है तो उसे औरत चाहिए।
2: प्लीज
5: मत तेज पूछे, औरत उसकी तेज को छीनने वाली है।
2: देखो,
5: ये दलीलें अब बाकी होती।
2: प्लीज,
5: तुम्हारे लिए नारी केवल एक वेश्या है। मैं कहती हूँ शिक्षा उठकर चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं।
2: सांत्वना,
5: कौन है आप? क्यों आए हैं इस समय?
8: क्षमा कीजिए, आप ठीक तो हैं?
5: बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से।
8: माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ, लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता।
5: तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
8: देखिए, मुझे नींद कम आती है, आप लोग शोर मचाएंगे तो बेवश होकर मुझे।
5: क्या मतलब है आपका?
8: आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं, आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं, इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सके।
4: सचमुच मैम साहब, मैं तो डर गया था, कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं।
5: मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। मैं माफी चाहती हूँ।
8: ठीक है, मैं जाता हूँ, गुड नाइट।
4: दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही में हूँ।
2: मुझे बहुत दुख है दरअसल।
5: चुप रहो, ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो।

0: जीत का इसमें कोई दोष नहीं है। उसका संबंध जूडेथ, मार्था और लिजा जैसी नारियों से रहा है जिनके लिए देह ही सब कुछ है। लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही है? अंतर में कहीं ना कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था बुरा तो न मानोगी, एक बात पूछूं?
1: खुशी से पूछो।
0: तुम माँ बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
0: इसके पिता कौन है?
1: मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, मैं भी पुरुष की तरह प्यासी हूँ, मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सर्वजीत भी हो सकता है, शायद वही है। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो?
0: मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है।
1: मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर के अस्वीकार की बात तुम लोगों में ही है, हम लोगों में समर्पण की प्यास है। समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है, विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया।
0: नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था, उसी का परिणाम है मेरे दो बच्चे, उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही।
1: लेकिन इससे क्या तुम्हारी देह की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में।
0: क्या उत्तर दिया उन्होंने?
1: देह के प्यास से उन्हें इनकार नहीं है, वो तो चाहते हैं कि साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए, उसके बाद जैसा अनुभव हो।
0: इसका अर्थ समझी?
1: समझी। वो कहना चाहते हैं जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, देह भोग की प्यास वैसे वैसे शांत होती जाती है। सांत्वना, मैं नहीं जानती क्या होगा, मुझे चिंता नहीं कि वो प्यास शांत होती है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अवश्य लगता है कि सच्चे सुख के प्राप्त हो जाने पर वो प्यास असंगत हो रहेगी।
0: फिर भी तुम कहती हो कि शरीर के अस्वीकार की बात हम ही लोगों में है।
1: अस्वीकार करने और असंगत हो रहने में अंतर है, क्या नहीं है?
0: कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग गहराई में उतर सकते हैं। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं, इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई।
2: देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था?
1: कौन हो तुम?
2: मैं कौन हूं ये पूछने का साहस है तुमने? अपने अंतर में झांक कर देखो, वहीं से बोल रही हूं। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श में बंधी तुम देह की प्यास को छिपाए फिरती हो। लेकिन क्या सर्वजीव के साथ तुम्हारा मुक्त व्यवहार तुम्हारी देह की प्यास के ऊपर ही आधारित नहीं था?
1: अगर ऐसा था तो मुझे रोकने वाला कौन था?
2: तुम्हारा अपना अहम, जबरदस्ती शहीद बनने की लालसा।
1: शब्दों के मायाजाल में फंसने की चेष्टा मत करो, ये ठीक है, छोटी उम्र के अपने दोनों बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देह के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती। शर्त केवल एक ही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती, वो देह का अपमान है।
2: लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो, इसी द्वंद से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाह में से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है, इस छद्म को उतार फेंको।
1: छद्म है, छद्म। सुनो, कहां गई तुम? बोलो।
0: कहीं कोई नहीं, ये मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूं। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था
1: सरजीत मेरा पति नहीं है। मैं डर गई। कंडक्टर और सहयात्री मुझे व्यभिचारी नहीं समझते और शायद स्टेपे से उतर जाने को विवश करते, या फिर कैसी है ये भूल भुलैया, कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? क्या इसी मुक्ति की खोज में मैं साधना केंद्र में नहीं आई? इतने सहज होकर भी ये लोग भटक रहे हैं, द्वंद में फंसी मैं भी भटक रही हूं। क्या इस भटकन का अंत देह के मिलन नहीं है? कहां है सत्य? कौन सच्चत इन तर्कों को ठगे हुए है? कैसे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति?
2: छद्म, ये छद्म है, इस छद्म से मुक्ति।

0: Good night.
1: Good night.
2: मामा तुम आज बहुत देर से आई हो। कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था।
3: हाँ, कमल अंकल के घर चली गई थी।
2: इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें क्यों नहीं ले गए?
3: कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना, हड़ताल होने वाली है।
2: बहुत देर हो गई थी इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था लेकिन हर बार अंगेज मिला, शायद खराब था।
3: शायद असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे, शायद तुम्हारे अंकल ने रिसीवर उतार कर रख दिया था।
2: हाँ, यही जवाब हमें भी मिला था, हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगे मामा?
3: मैं तो खाई बेटा, लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुलाओ अपने भैया को।
4: पढ़ने का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा।
3: माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? मुक्ति तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही, मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं, मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में काट न पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रासी एकांत को। क्या मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है? क्या इसे मुक्ति पालूं? क्या वो मुक्ति होगी?
5: सांत्वना? सांत्वना, तुम सो गई?
3: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है।
5: सांत्वना, हमें यह लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए।
3: हाँ, कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा।
5: तुम शादी कर लो।
3: मैं शादी नहीं कर सकती विनोद, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
5: धोखा तुम आप दे रही हो।
3: मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहती हूँ करती हूँ।
5: इच्छा मेरी भी तो हो सकती है, जैसे तुम चाहती हो कि तुम किसी का शिकार न बनो, वैसे क्या मैं नहीं चाह सकता कि मैं तुम्हारा शिकार न बनू?
3: शिकार? तुम क्या कह रहे हो विनोद?
6: सांत्वना, क्या है सांत्वना, किसे पुकार रही है?
3: कुछ नहीं, सपना देख रही थी।
6: या अपने प्रेमियों की याद कर रही थी? विनोद, कमल।
3: तुम्हें ईर्ष्या होती है?
6: स्वाभाविक है, सारी रात यहाँ ऊपर के बर्फ पर लेटा लेटा।
3: तुम सब पुरुष एक जैसे होते हो। उनके एक मित्र थे, एक बार उनके साथ भी इसी तरह कूपे में सफर किया था। सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे। बेचारे परवर्टेड।
6: अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता, क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था?
3: आप नहीं पूछोगे?
6: बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता।
3: ताने मत दो, मैं न तब समर्पित हुई थी और न अब हो सकूंगी।
6: जी मैं आता है कि नीचे उतरकर तुम्हारे शरीर को झंझोर डालूं। और
3: फिर रुक क्यों गए?
6: जागने की राह देखता रहा, अब नहीं मानूंगा।
3: तुमने और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया?
6: तर्कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी।
3: जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता है न सत्य, वो न तन को बांध पाता है न मन को। इसी को कहते हैं अपवित्र होना।
6: पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो, तुम्हारा यही छद मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना प्लीज।
3: इसे हटा, मैं कहती हूँ एक कदम भी आगे न बढ़। कौन आया? कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
7: मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सरजीत। तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ, विलायत से कब आए, कैसे हो? और मार्था? ओह, ये मार्था तो नहीं है?
3: मेरा नाम सांत्वना है।
7: ओ, देखता हूँ तुमने शादी कर ली है सरजीत भाई, बधाई।
6: निगम, इनसे मिलो, यह है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है, तुम कहो कहाँ कहाँ रहे बहुत दिनों के।

0: आज मिल रहे हो?
1: हाँ, वो तो है, पर तुम हो भाग्यशाली। अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सलेंट है। वाह, माफ कीजिएगा मिसेस थापर, हम बहुत गहरे दोस्त हैं। यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर जी?
2: ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है।
1: ओह आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के लिए स्थान नहीं होता।
2: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप
1: जा रहा हूँ, खेद है मैंने आपके एकांत में खलल डाला। और सरजीत एक बात याद रखो, ये भारत है, यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए, वो बाहर वाले को भी खींच लेता है।
2: दरवाजा खुला रहने दो।
1: क्यों?
2: मेरी इच्छा।
3: कूपे में एक की इच्छा नहीं चलती।
2: तो आप में भी समझने की शक्ति है। स्टेशन आ रहा है, मैं यहीं उतरूंगी।
4: अभी तो अंधेरा है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है, और ये स्टेशन भी बहुत छोटा सा है।
2: बड़ी सुंदर जगह है ये।
4: सुंदर तो तुम हो, जगह नहीं, ये तो क्रूर है, विछो का स्थान।
2: तुम्हारा ऐसा सोचना भी क्या एक छद्म ही नहीं है? जो तुम्हारी दृष्टि में विछो का स्थान है, वो किसी के लिए मिलन का भी हो सकता है। तुम्हारे साथ फिल्मी डायलॉग के आदान प्रदान से तो यहाँ उतरना हजार गुना अच्छा है। अच्छा, जा रही हूँ, बुरा ना मानना। प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत की देह का उपभोग। अच्छा, नमस्कार। क्या सोच रहे हो, जवाब भी नहीं दोगे?
4: नमस्कार। तुम भाग रही हो सांत्वना, कब तक भागती रहोगी?
2: कंडक्टर, मैं यहीं उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो।
3: जी अभी आया। लाइए,
4: मैं उतारे देता हूँ, आप उतरिए।
2: ये लीजिए।
1: गई, अब तो मैं आ सकता हूँ, खूब बातें करेंगे दोनों। सामान ले।
4: क्या मेरी दशा उस मछुए जैसी नहीं है, जो एक तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर खाली हाथ लौट आया था? लेकिन इसी लेकिन के कारण तो मैं भी साधना केंद्रों की खाक छानता फिर रहा हूं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक समीक्षा की वार्ता की। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसरों पर संभावनाएं तलाशने के लिए भी विचार किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। स्वीडन का रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ 31वां वैश्विक सम्मान है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में दो तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचातानी और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग अब पूरी हो गई है।

से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग अब पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।

0: को सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से अधिक मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। रूस में ड्रोन हमलों में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सरगोई सोब्यानिन ने बताया कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ड्रोन हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमलों में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाना तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है। भारत की श्रियांशी वलिशेट्टी ने चीन के बाउजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रियांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेम में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson, in Gothenburg. The two sides explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star Commander Grand Cross upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star Commander Grand Cross is the utmost recognition and honor that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honor for PM Modi. Prime Minister Modi and Swedish counterpart will also jointly address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business forum, along with President of the European Commission, Ursula von der Leyen. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour, after concluding his visit to the Netherlands. Swedish Gripen fighter jets escorted Prime Minister Modi's aircraft as it entered the country's airspace. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by his Swedish counterpart. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defense, critical minerals, and other key sectors. Both leaders also expressed deep concern over the situation in West Asia and its implications for global energy supplies and trade networks. Prime Minister Modi had arrived in The Hague on Friday for a two-day visit after concluding his visit to the UAE. The new Keralam government, led by Congress leader V.D. Sathisan, will be sworn in tomorrow in Thiruvananthapuram. Congress had announced Sathisan as the next chief minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees in Gandhinagar Municipal Corporation. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Center at the National Institute of Design, NID, in Gandhinagar.

0: Union Railways Minister Ashwini Vaishnaw today virtually flagged off a new express train service between Bengaluru and Mumbai, boosting rail connectivity between Karnataka and Maharashtra. Speaking on the occasion, Mr. Vaishnaw said the long-pending demands of people in South and North Karnataka are now being fulfilled. Highlighting railway infrastructure growth, the minister said Karnataka currently operates 12 pairs of Vande Bharat trains. Union Minister of New and Renewable Energy Prahlad Joshi said India has now successfully managed a record peak power demand of 256.4 gigawatt in a single day. In a conversation with the private English News Daily, Mr. Joshi said nearly 33% of the power demand met through renewable energy sources. He said India's power infrastructure has become stronger, more resilient and future ready. The minister added that this transformation reflects the rapid expansion of energy capacity, grid strengthening and the growing contribution of clean energy in powering country's growth journey.
1: Today, we have successfully managed 256.4 gigawatt a peak demand in a single day. This itself speaks that there is a systematically there is improvement is there. This is number one. Number two, about your question about the impact. So out of that 256 gigawatt, what we manage in a single day, peak demand at a single particular point of time, out of that, 33% is from the renewable energy. This is an added thing.
0: And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रशांत कुमार मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की संयुक्त अरब अमीरात के अल धाफरा क्षेत्र में बरकाह परमाणु संयंत्र पर ड्रोन हमला विकिरण रिसाव की कोई खबर नहीं मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत और बैडमिंटन में भारत की श्रेयांसी वलिशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता और अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की दोनों पक्षों ने व्यापार हरित परिवर्तन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उभरती हुई तकनीक स्टार्टअप मजबूत आपूर्ति श्रृंखला रक्षा अंतरिक्ष जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर विचार किया इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया स्वीडन का यह सम्मान किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है यह प्रधानमंत्री मोदी की को प्राप्त हुआ 31वां वैश्विक सम्मान है अधिक ब्यौरा हमारी संवाददाता से
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे साक्षी सिंह आकाशवाणी समाचार गोथेनबर्ग स्वीडन
2: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री राब येटे ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी ब्यौरा हमारे संवाददाता से
4: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाते हुए जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, नवाचार, रक्षा, सतत विकास और गतिशीलता के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करते हुए भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने गर्मजोशी भरे आतिथ्य और व्यक्तिगत रूप से हवाई अड्डे पर आकर उन्हें विदाई देने के लिए प्रधानमंत्री जेतन को धन्यवाद भी दिया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त अरब अमीरात के अल धाफरा क्षेत्र के बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बाहरी सीमा पर आज एक ड्रोन ने हमला किया जिससे संयंत्र के एक विद्युत जनरेटर में आग लग गई। अबू धाबी के अधिकारियों ने बताया है कि कोई घायल नहीं हुआ और कोई विकिरण रिसाव नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि घटना के बाद संयंत्र के 4 रिएक्टरों में से एक को कुछ समय के लिए चलाया गया। संघीय परमाणु विनियमन प्राधिकरण ने कहा कि सभी आवश्यक प्रणालियां स्थिर रहीं और सभी रिएक्टर इकाइयां सामान्य रूप से काम करती रहीं। ये संयुक्त अरब अमीरात के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर पहला हमला है। ईरान ने घोषणा की है कि वे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जलडमरू मध्य विश्व ऊर्जा व्यापार के लिए एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले ईरान ने इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के खिलाफ ही प्रयोग किए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। कल ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ये तंत्र केवल वाणिज्यिक जहाजों और ईरान के साथ सहयोग करने वाले देशों को ही अनुमति देगा। उन्होंने कहा कि अमरीका की कथित स्वतंत्रता परियोजना से जुड़े ऑपरेटर को प्रस्तावित मार्ग प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
2: भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। सरकार ने सोशल मीडिया के उस पोस्ट को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। इसके अलावा तेल शोधन कारखानों के पास भी भंडारण है। PIB ने नागरिकों को नहीं घबराने की सलाह दी है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। इसे पिछले एक वर्ष के आसपास मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन द्वारा किया गया सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
6: मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने बताया कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हो गए, जबकि रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ड्रोन हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। दूतावास ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर सहायता उपलब्ध करा रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से

300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 लोगों की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट कोविड-19 जैसे महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेर्पा हैं। भारत की श्रेयांसी वलुशेट्टी ने चीन के बाउजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन ने सीधे गेम में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। संयुक्त अरब अमीरात के अल धाफरा क्षेत्र में बरकाह परमाणु संयंत्र पर ड्रोन हमला, विकिरण रिसाव की कोई खबर नहीं। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। और बैडमिंटन में भारत की श्रेयांसी वलुशेट्टी ने बाउजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।